0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: 2013 की बात है। इस साल में हुआ ये कि विराट और अनुष्का पहली बार मिले एक शैम्पू का कमर्शियल शूट करते हुए। दोनों को क्या ही खबर थी कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, फिर शादी, उसके बाद बच्चे, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उस समय दो विराट वाज वन ऑफ इंडियाज राइजिंग क्रिकेट स्टार्स और अनुष्का ऑलरेडी एक पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। तो इनिशियल उनका जो इंट्रोडक्शन था वो कैजुअल था, बीच में उनके एक दो बार ब्रेकअप भी हुए, बट दे एक्चुअली एंडेड अप हैविंग अ फेरी टेल वेडिंग इन इटली, जो वेडिंग सबको याद है। बट यू नो मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, जब दोनों विराट एंड अनुष्का मिले थे ना, दे मेट ऑन अ वर्क प्रोजेक्ट। दोनों नहीं सोच रहे थे कि उन्हें सच्चा प्यार मिल जाएगा। तो अगली बार आप एक गंदी सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो जैसे दुनिया में सबसे खराब जॉब आप ही का है, हो सकता है ऑन दी अदर साइड ऑफ दैट पीपीटी इज द पर्सन जो आपके सपनों का राजकुमार या राजकुमारी है। कपड़े ठीक से पहन कर जाना, पीपीटी मीडियोकर बना लो, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन लव कम्स इनटू योर लाइफ। इट कुड बी व्हाइल शूटिंग अ सिली लिटिल कमर्शियल फॉर अ शैम्पू एड। दैट सेड, अगर आप ऑलरेडी अपने राजकुमार या राजकुमारी को मिल चुके हो, अपनी स्टोरी सुना दो यार। आप ही के फेरी टेल्स के मद्देनजर रखते हुए तो मैं जिंदा हूँ। ऑन दैट नोट, यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टा या FB। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE। सो गो अहेड डार्लिंग, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iska bana, uska bana, saka bana. Ja bana. Burka, burka. La vid bala burka.
1: Milci burka. Hello.
2: Sir, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
1: हाँ जी बोलिए।
2: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
1: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
3: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
1: कौन बोल रही है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
1: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
4: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
1: हेलो कौन बोल रहा है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
1: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
3: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
1: हेलो मैडम।
2: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
1: कौन बोल रहा
2: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
1: अभी कोई और बोल रही थी?
2: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
1: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है इसमें, कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
5: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: कौन बोल रहा है?
2: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
1: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
6: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
1: कौन बोल रहा है भैया?
2: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
1: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
7: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
2: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आपसे सर फोन मत काटिएगा।
8: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
9: थैंक यू
10: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जानू मैं डाइटिंग कर रही हूँ, सिर्फ सैलेड खाऊंगी, लेकिन जानू के साथ डेट पर जाने से पहले वो जो चार बर्गर्स आप हांड के जाते हो उसका कन्फेशन कौन करेगा? हाँ,
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: वैसे आई लव द वर्ड हांड, आपने ही मुझे सिखाया हांडना क्या होता है. बट ऑन दैट नोट, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा कन्फेशन है जो आप किसी और के साथ नहीं कर सकते बिकॉज इट्स टू वियर्ड और टू क्रेजी और जस्ट टू ओवर द एज, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर. आई बी हैप्पी टू टॉक टू यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. काम है आपसे प्यार करना. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. और मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाई मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय रोशी, हाउ आर यू?
2: आई एम वेरी गुड. आपने जब मुझे अपना कन्फेशन लिखकर भेजा ना, आई वॉज लाइक ओके, आई नीड टू टॉक टू दिस गर्ल, शी साउंड्स क्रेजी एएफ. ओके, इन अ गुड वे. लेकिन बट आई वांट टू नो कि आपका ये क्रेजी एएफ कन्फेशन है क्या?
4: सो बेसिकली हुआ क्या, तो मेरा एक नया बॉयफ्रेंड बना है, ठीक है, एंड उसने अभी रिसेंटली अपना एक न्यू जॉब ज्वाइन की है. तो अब मैंने सोचा कि मैं उसके फ्रेंड्स और कलीग्स को इम्प्रेस करती हूँ, तो मैंने ये आइडिया लगाया कि मैं उसको अच्छा सा खाना पैक करके भेजूंगी रोज लंच.

0: खाना खा के पागल ही हो गए। उनको लगा कि मैंने बनाया है, तो वो लोग कहने, अरे यार भाभी तो बड़ा अच्छा खाना बनाती है, भाभी तो बड़ा अच्छा खाना
1: भाभी
0: बनाती है।
1: भाभी कैसे बन गए, अभी तो आपका नया नया बॉयफ्रेंड बना था।
0: अरे आपको पता तो है लड़कों का, अब उन्हें समझ आ गया कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड, मतलब गर्लफ्रेंड हूँ, फिर इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, तो लड़के तो फिर आ जाते हैं ना भाभी
1: हाँ
0: भाभी पे।
1: एग्जैक्टली।
0: तो फिर अब वो अगले दिन फिर मुझे बोले कि बना के दो, तुम ही बना के दो। तो मैंने बोला कि ठीक है, फिर से मंगवा के कर देते हैं। मैंने फिर से ढाबे से मंगवा दिया, उसने पैक करके दे दिया। अब तो उसके फ्रेंड्स को इतना अच्छा लगे जा रहा है, अब उन्हें हर दिन चाहिए मेरे हाथ का खाना। पर मेरा क्या है, मैं तो यही सोच रही हूँ कि मैं हर दिन अब ढाबे से मंगवा के देती रहूंगी, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पापा तो वैसे ही बहुत रिच है, तो हाउ डू आई इवन केयर।
1: तो अब पापा के पैसों से ढाबे से खाना मंगा मंगा के अपने बॉयफ्रेंड और उसके कोलीग्स को खिला तो रहे हो, लेकिन बॉयफ्रेंड को जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन क्या करोगे?
0: उस दिन पता लग गया तो फिर मैं उसको अपने हाथ का जला भुना खाना बना के खिला दूंगी।
1: आई हैव अ बेटर सजेशन। यू नो, अगर आपके
0: हाँ
1: बॉयफ्रेंड को आपका खाना इतना पसंद आ रहा है, जो आपके हाथ का नहीं है, वो लालू काका का है जो ढाबे से बनाते
0: हाँ
1: हैं, लेकिन
0: हाँ
1: वेन एवर ही डज फिगर आउट, और उसको शायद थोड़ा बुरा भी लगेगा, यू कैन ऑलवेज मेक इट अप टू हिम बाई यू नो डूइंग नॉटी थिंग्स, ही विल जस्ट
0: यस
1: फॉरगेट
0: ऑफ
1: एवरीथिंग एल्स। है
0: कोर्स।
1: ना, रोशिफाई कर दूँ आपको इस पागलपन की
0: हाँ
1: कन्फेशन के लिए?
0: हाँ बिल्कुल।
1: देयर यू गो,
2: यू हैव बीन रोशिफाइड।
1: ये कहना बिल्कुल सही होगा कि आपके दिमाग के दो तीन पेज तो बिल्कुल ही ढीले हैं, बट इन अ रियली गुड वे। इट वॉज अमेजिंग टॉकिंग टू यू मिस्ट्री कॉलर। आप बहुत ही औसम हो, और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह आपने कुछ भी ऐसा खुराफाती किया है ना, आई टोटली वॉन्ट टू नो योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी एंड टेल मी अबाउट इट। यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो डू वट एवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

करती है तू अक्सर, पूरी कयामत होगी ना छोड़ी है कोई कसर। टॉप टू बॉटम मार्क्स तुझे दिए मैंने 10 out of 10, क्यों नहीं चाहिए चल ओके देन। भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो फिर टल्ली, तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल्ली तू।

0: ओके सो देयर इज दिस गर्ल मेरे कॉलेज में हु आई एम टोटली क्रशिंग ऑन. हम बहुत अच्छे दोस्त हैं बट आई वॉन्ट टू स्टार्ट टू लाइक यू नो मिस मी अ लिटिल बिट सो दैट जब मैं उसे प्रपोज करूँ शी फील्स लाइक ओ आई एम ऑलरेडी इन लव विद दिस गाय. आई नो ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चीट शीट सिचुएशन है बट यू आर माई ब्रोशी एंड आई नो यू गोना हेल्प मी सो प्लीज हेल्प.
1: Broshi ke DM se.
0: Okay, Sameer, you are using the Broshi card aur is case mein main helpless hoon. I will have to help you no matter how many psychological tricks we use to do this. Number one, aap intermittent reinforcement use karo. Iska matlab ye hai ki aap use jab wo aapko text bheje sometimes right away respond karo. Lekin kabhi kabhi 15-20 minute ke baad, kabhi kabhi 1 ghante ke baad, kyunki isse hoga ye. आपको स्लॉट मशीन पता है जिसमें मतलब कभी कभी यू गेट ऑल थ्री राइट एंड कभी कभी यू नेवर विन एनीथिंग. इट्स कॉल्ड द स्लॉट मशीन इफेक्ट. अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड्स मेक अस फील मोर एंगेज्ड विद द अदर पर्सन. जब वो आपको प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएगी शी विल एक्चुअली बी ड्रॉन टू यू फील मोर अट्रैक्टेड टू यू विदाउट रियलाइजिंग व्हाई इट्स हैपनिंग. नंबर टू, इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस लाइक ओ आज तेरा दिन कैसा था एंड डिड यू लाइक हैव अ गुड टाइम इन कॉलेज, कॉलेज के सेश कैसे थे, वो सब मत पूछो. बेसिकली यू हैव टू सेंड हर टेक्स्ट जो इमोशनली चार्ज्ड हो या इमोशनली नॉस्टैल्जिक हो. जैसे कि आई जस्ट वॉक बाय दैट स्ट्रीट जहां हम पिछले हफ्ते बारिश में भीगे थे एंड लाइक इट रियली मेड मी स्माइल. या फिर आई वॉज थिंकिंग अबाउट वो क्रेजी डम जोक जो तूने परसों क्रैक किया था कॉलेज की कैंटीन में, इट्स स्टिल नॉट फनी. दिस विल मेक श्योर दैट देर आर इमोशनल कॉल बैक्स इन हर माइंड विदाउट हर इवन रियलाइजिंग इट एंड बिफोर यू नो इट शी विल बी मोर अट्रैक्टेड टू यू देन यू आर टू हर राइट नाउ एंड यू आर ऑलरेडी वेलकम फॉर दिस वन. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही सैम की तरह कोई बेहतरीन से सवाल है पूछने के लिए, आप मुझे बिना ब्रोशी की दुहाई दिए एक डीएम कर सकते हो. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochiE. फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: Roshi Baba! Roshi Baba!
3: Roshi Baba ki!
4: Calm down, my bhagjano. अगर आप चाहते हैं कि like how my bestie has just lost 12-13 kilos, वैसे ही आप weight loss कर लो, तो मेरी bestie का तरीका of weight loss is, वो रोज सुबह उठकर jams खाती है. You must be thinking कि मेरी girlfriend, I mean, oops, bestie पागल है. नहीं नहीं, jams is a short form. इसका मतलब ये है कि रोज रात को आपको आधा teaspoon J for जीरा, A for अजवाइन, M for मेथी और S for सौंफ. अब ये सब चार चीजें लेनी है, इसको एक ग्लास आधे ग्लास पानी में भिगो कर रखना है. अगले दिन सुबह उठना है, इस अजीब से मिश्रण को छानना है और इसका जो पानी है वो पीना है. एंड जस्ट लाइक माई बेस्टी हु आई मिस्टेकनली कॉल्ड माई गर्लफ्रेंड, एंड अपेरेंटली एवरी वन इन आवर सोसाइटी इज नाउ कॉलिंग हर देयर गर्लफ्रेंड बिकॉज शी लुकिंग सो हॉट. आप इस जैम्स वाले पानी को ट्राई करके देखो एंड वंस इट वर्क्स फॉर यू. You obviously want to thank my bestie. I'm not sharing her photos. She's looking too hot. It's illegal. You can thank me for it. Mera naam hai Mirchi Roshi. Naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E. So go ahead. Do what you need to do. Lekin, kahin mat jana jana. Kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte rao Mirchi. It's hot. Just like my bestie.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. Na
1: virtua la burga. Milci, burga. Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है ये? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बने। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कुकड़ू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
5: हिट हिट हिट हिट गाना
6: हिट गाना हिट गाना हिट
4: Radio Mirchi, New York. It's hot.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: You know, I love the word kiss. लेकिन किस को जब हिंदी में बोलते हैं ना तो वो वाला वर्ड मुझे बहुत ही वियर्ड लगता है. पप्पी. ऐसे लगता है हम किसी कुत्ते की बात कर रहे हैं. और मैं आपसे किस और पप्पियों की बात इसलिए करी हूँ, ऑल्सो बिकॉज आई लाइक किसिंग. लेकिन मेरे साथ लाइन पर माहिरा है और माहिरा की जो प्रॉब्लम हैज़ अ लॉट टू डू विद पप्पियाँ झप्पियाँ पाले हम. हाय माहिरा. आई एम सॉरी, मतलब मैंने आपसे पूछा नहीं कि भैया क्या प्रॉब्लम है, कॉन्टेक्स्ट बता दो. हमने फेसबुक पे इतनी बातें कर ली थी इसके बारे में दैट आई जस्ट थॉट लाइक यू नो लेट्स कट टू द चेज एंड फाइंड आउट कि महिरा की जिंदगी में प्रॉब्लम है क्या.
3: दिस माइट बी द वियर्डेस्ट थिंग यू एवर हर्ड बट लाइक आई एम विद अ गाय फ्रॉम लास्ट 2.5 इयर्स और समथिंग. सो लाइक he's great in bed, but when it comes to just making out and kissing and everything, so मतलब वो इतने weird तरीके से kiss करता है ना, मैं आपको मतलब कैसे समझाऊँ. It's like punch punch punch यार, जैसे बंदा खाना खा रहा है बोल के. So I'm like मतलब और the times are like I can't really stop and tell him कि what are you doing. So it's like I'm like ऐसे मोमो खाया वो चप चप करके मेरे lips पे.
2: मुझे उससे हमेशा याद आती है जो भी बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स ऐसे किस करती है ना, मुझे हमेशा लगता है कि उनके दिमाग में उन्हें लगता है कि वो मोमोज खा रहे हैं. यू नो
3: एग्जैक्टली
2: हाय एव. लेकिन यू नो द थिंग इज दैट अगर बॉयफ्रेंड बुरा किसर है तो बॉयफ्रेंड बुरा किसर है. मैं आपको कहती कि अगर इतना खराब है तो छोड़ दो, बट यू आर सेइंग द एक्शन इज अमेजिंग है ना. ओके कितनी यूनिक. कभी कभी मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो मैं डॉक्टर बन जाती यार, मतलब उसमें कम सिरदर्द होती. यहाँ बंदी कह रही है कि बंदा किसिंग नहीं करता ठीक से, तू बता क्या करूँ मैं. आई एम लाइक कि अच्छा ठीक है सोचने दे. तो एक काम कर, जो YouTube पे आई एम श्योर, मुझे पता नहीं है बट मैं अभी पता कर सकती हूँ कि YouTube पे ट्यूटोरियल्स होते होंगे ऑन हाउ टू किस प्रॉपरली, ठीक है. तो उसको बोल कि बेबी आज हम फुटबॉल मैच नहीं देखेंगे, आज हम देखेंगे ट्यूटोरियल्स ऑन हाउ टू किस प्रॉपरली. मुझे लगता है मैं खराब किसर हूँ. फिर वो तुझे कहेगा कि नहीं नहीं बेबी तू तो बहुत अच्छी किसर है.
3: एग्जैक्टली
2: तो तू उसको ये कह रहा कि मुझे लगता है मैं बेटर किसर बन सकती हूँ इसलिए हम दोनों देखेंगे. या फिर यू टेल हिम कि पता है मैंने कहीं पढ़ा था मैगजीन में कि किसी करने से पहले ना हाथ पे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो बचपन में अपने हाथ को किस करके प्रैक्टिस करते थे कि जब मैं किसी बंदी को किस करूंगा तो मैं ऐसे

टू यू महीरा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी किसिंग स्लैश चप चप चप चप प्रॉब्लम है, फील फ्री टू हिट मी अप, क्योंकि डॉक्टर तो मैं बनी नहीं, अब जो मैं बनी हूँ तो आई विल सफर फॉर इट. तो वट एवर यू डू ना, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: से करेंगे सबका स्वागत,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आज का वर्ड ऑफ द डे है डॉकर्स। डॉकर्स बेसिकली वो छेद होते हैं जो एक बिस्किट खाते हो ना आप, जिसके ऊपर छेद होते हैं, तो बेकिंग प्रोसेस में ताकि बिस्किट्स के थ्रू स्टीम निकल सके वो छेद क्रिएट किए जाते हैं और उसे कहते हैं डॉकर्स। लेकिन आपको ये बेटर ऐसे समझ आएगा कि वह छेद जो आपके बॉयफ्रेंड के दिमाग में एटलीस्ट 100 की मात्रा से ज़्यादा में है, क्योंकि आप उसे एक ही बात 480 बार सिखा चुके हो, समझा चुके हो, लेकिन ही डज नॉट अंडरस्टैंड। अगर आपके भी बॉयफ्रेंड के दिल में बहुत जगह है लेकिन दिमाग में उससे भी ज़्यादा छेद और उसकी वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हो, आई टोटली फील यू सिस्टर। व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर, मैं आपको साथ के साथ नए शब्द भी सिखा दूंगी और उसके बाद आपके ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश करूंगी। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE, एंड यस आई एम द गर्ल इन लव विद लव। ऑन दैट नोट, व्हाइल यू फाइंड मी ऑन योर सोशल्स, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: मुझे बस एक ऐसा बंदा चाहिए जो नॉर्मल हो. ये कैसा सेंटेंस है, लेकिन कमिंग फ्रॉम माय बेस्टी इट्स नॉट वियर्ड एट ऑल. सो उसे एक बंदा मिला है ऑन अ डेटिंग ऐप जो उसके हिसाब से नॉर्मल नहीं है, बिकॉज मेरी बेस्टी कहती है कि वो इतना एक्स्ट्रा स्वीट है और इतना एक्स्ट्रा नाइस है और इतने प्यार से बातें करता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं रसगुल्ला हूँ और वो एक चाशनी है. एंड शी इज़ लाइक, यार आई वुड मेक दिस रिलेशनशिप वर्क, लेकिन अगर ये बंदा ये स्वीटनेस का मास्क उतार देना तो शायद मुझे इसके अंदर एक ऑथेंटिक इंसान दिख जाए जिससे मैं शायद मोहब्बत कर सकूं. क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है दैट यू आर इनटू समबडी, यू रियली वांट टू बी विद देम, बट आपको लगता है कि शायद जो वो दिखा रहे हैं वो हैं वो सच में नहीं है. आपको अगर ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन समझ में आ गया मौसी जी, तो सेंड मी योर आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड एंड डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Iskabala, uskabala, sakabala. Rabbala. Murga, murga. La virpa la murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
4: 33501।
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
5: हाय।
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए।
4: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर। ये बेल जा रही है। हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई, तो एक बात सुन, ये
4: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है।
2: हेलो
4: सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
2: किस चीज से पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
2: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना, दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना।
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
6: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
2: किसने दिया मेरा नंबर?
6: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं कुकड़ू को।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जानू मैं डाइटिंग कर रही हूँ, सिर्फ सैलेड खाऊंगी, लेकिन जानू के साथ डेट पर जाने से पहले वो जो चार बर्गर्स आप हांड के जाते हो उसका कन्फेशन कौन करेगा? हाँ,
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: वैसे आई लव द वर्ड हांड, आपने ही मुझे सिखाया हांडना क्या होता है. बट ऑन दैट नोट, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा कन्फेशन है जो आप किसी और के साथ नहीं कर सकते बिकॉज इट्स टू वियर्ड और टू क्रेजी और जस्ट टू ओवर द एज, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर. आई बी हैप्पी टू टॉक टू यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE और मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाई मिस्ट्री कॉलर.
4: Hi Roshi, how are you?
2: I am very good. आपने जब मुझे अपना confession लिखकर भेजा ना, I was like, okay, I need to talk to this girl. She sounds crazy AF. Okay, in a good way, लेकिन. But I want to know कि आपका ये crazy AF confession है क्या?
4: So basically हुआ क्या? तो मेरा एक नया नया boyfriend बना है, ठीक है? And उसने अभी recently अपना एक new job join की है. तो अब मैंने सोचा कि मैं उसके फ्रेंड्स और कलीग्स को इम्प्रेस करती हूँ. तो मैंने ये आइडिया लगाया कि मैं उसको अच्छा सा खाना पैक करके भेजूंगी रोज लंच में. अब मैंने उसको एक दिन तो खाना पैक करके भेज दिया लंच में. तो अब मेरे को तो आता नहीं है खाना बनाना, बट उसे नहीं पता ये बात, क्योंकि अभी हम न्यू रिलेशनशिप में आए हैं ना. तो मैंने तो खाना पैक करके भेज दिया. अब वो खाना मैंने भेजा उसे ढाबे से, हमारे घर के पास एक ढाबा है, वहां से मंगवा के उसके लंच में पैक करके भेज दिया ये बोल के कि मैंने बनाया. अब वो गया ऑफिस, उसने अपने कलीग्स के साथ लंच वंच किया, उसके कलीग्स तो खाना खा के पागल ही हो गए. उनको लगा कि मैंने बनाया है, तो वो लोग कहने लगे, अरे यार भाभी तो बड़ा अच्छा खाना बनाती है, भाभी तो बड़ा अच्छा खाना बनाती है.
2: भाभी भाभी कैसे बन गए? अभी तो आपका नया नया बॉयफ्रेंड बना था.
4: अरे आपको पता तो है लड़कों का, अब उन्हें समझ आ गया कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, फिर इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, तो लड़के तो फिर आ जाते ना
2: भाभी.
4: तो फिर अब वो अगले दिन फिर मुझे बोले कि बना के दो, तुम ही बना के दो. तो मैंने बोला कि ठीक है, फिर से मंगवा के कर देते हैं. मैंने फिर से ढाबे से मंगवा दिया, पैक करके दे दिया. अब तो उसके फ्रेंड्स को इतना अच्छा लगे जा रहा है, अब उन्हें हर दिन चाहिए मेरे हाथ का खाना. पर मेरा क्या है, मैं तो यही सोच रही हूँ कि मैं हर दिन अब ढाबे से मंगवा के देती रहूंगी, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पापा तो वैसे बहुत रिच है, तो हाउ डू आई इवन केयर.
2: तो अब पापा के पैसों से ढाबे से खाना मंगा के अपने बॉयफ्रेंड और उसके कोलीग्स को खिला तो रहे हो, लेकिन बॉयफ्रेंड को जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन क्या करोगे?
4: उस दिन पता लग गया तो फिर मैं उसको अपने हाथ का जला भुना खाना बना के खिला दूंगी.
2: I have a better suggestion, you know. अगर आपके बॉयफ्रेंड को आपका खाना इतना पसंद आ रहा है, जो आपके हाथ का नहीं है, वो लालू काका का है जो ढाबे से बनाते हैं, लेकिन whenever he does figure out और उसको शायद थोड़ा बुरा भी लगेगा, you can always make it up to him by, you know, doing naughty things.
4: He'll
2: just forget everything else. रोशिफाई कर दूं आपको इस पागलपन की कन्फेशन के लिए?
4: बिल्कुल.
2: There you go.
0: You've been roshified.
2: ये कहना बिल्कुल सही होगा कि आपके दिमाग के दो तीन पेज तो बिल्कुल ही ढीले हैं, बट इन अ रियली गुड वे. इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू मिस्ट्री कॉलर. आप बहुत ही ऑसम हो, और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह आपने कुछ भी ऐसा खुराफाती किया है ना, आई टोटली वॉन्ट टू नो योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी एंड टेल मी अबाउट इट. यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू वट एवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: again, right click on the base drive D and repeat same process. We'll type approx size of 1.5 TB in MB. So let's type 1536000. Rest process is same. If you like this video, please do subscribe the channel for latest updates on Windows platform. If you have any query or suggestion in Windows platform or any of its application, please write in the comment below. I will definitely respond and try to figure out as soon as possible. Now here you can see external drive is partitioned in three new drives, D, E and F, with the space we have allocated. That's all for today. Goodbye. Mitchy
1: Roshi. Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: ये ना एक छोटी सी क्यूट सी स्टोरी बैंक ऑफ अमेरिका इनवाइट्स किड्स 6 टू 18 टू गोल्फ विद अस एज वी चैंपियन द नेक्स्ट जनरेशन हु डेयर्स टू आस्क व्हाट वुड यू लाइक द पावर टू डू
3: इजंट दिस ग्रेट टू सी
4: तो मेरी पहाड़ों में एक बहुत अच्छी दोस्त है लेकिन उनका एक बेटा है जो आईआईटी में प्रोफेसर है
3: एवरीवन लियो नोटबूम हियर फॉर एस्क लियो.com
4: बेटे की शादी हो चुकी है
3: दिस टर्न्स आउट टू बी वन ऑफ द मोर कंट्रोवर्शियल पोजीशंस दैट आई सी पीपल टेक ऑल द टाइम पीपल फील स्ट्रांगली दैट नॉट पार्टिशनिंग इज द वे टू गो पार्टिशनिंग इज द वे टू गो
4: एंड शी न्यू की बहू ने अभी-अभी वो पोर्सिलिन का सेट खरीदा था इतनी देर में उनका बेटा नीचे आया
0: In
4: और
0: today's video,
4: माँ को
0: we are going to explore a free software toolkit that comes with every Seagate external hard drive and provides simple to use tools for managing security, backup, restoring files with a predefined schedule and even mirror means continuous sync of data between computer and external drive and much more to help us to get the most out of our storage solution. So let's crack the window.
4: Because he said कि माँ इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है that is worth it. तो अगर ये तुम्हें रुलाएगा तो एक कप चाय मैं पूरा सेट
0: तोड़ टूलकिट सॉफ्टवेयर दैट केम विद द 5 टीबी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव दैट आई हैड परचेस रिसेंटली
4: बिकॉज़ सच्चा प्यार ना इट डजंट नीड लाइक बिग कार्ड्स और एन ओकेजन लाइक मदर्स डे अलोंग विद द करेक्ट इंस्टॉलेशन
0: प्रोसेस ऑफ दिस टूलकिट सॉफ्टवेयर इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो येट प्लीज वॉच इट वंस एज इट विल मेक दिस वीडियो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड लिंक इज इन द आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बिलो
4: आपको कन्विंस कर देता है कि दुनिया में अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपसे प्यार करता है तो वो ये इंसान है फॉर ऑनलाइन हेल्प ऑफ दिस स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी और वो बताने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो देयर इज अ ऑप्शन टू मिनिमाइज
0: ऑनलाइन हेल्प सेटिंग्स
4: एंड चीज जो मैं अब शायद 10 सालों से कहती आई हूं और कहती रहूंगी वो ये है कि
0: स्टार्ट ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द विंडोज स्टार्टअप दैट इज बाय डिफॉल्ट ऑन एंड सेकंड वन इज टू इनेबल डिटेल लॉग टू हेल्प ट्रबल शूट इश्यूज रेस्ट इज जनरल यूजर मैनुअल एंड ऑनलाइन सपोर्ट इफ यू वांट टू कनेक्ट टू Seagate सपोर्ट स्टाफ एंड कैन सी करंट सॉफ्टवेयर वर्जन इन अबाउट सेक्शन नाउ लेट्स चेक आउट व्हाट इन वन टच विद पासवर्ड ऑप्शन Here, it's showing the logical drive letter along with the usable space and file system. I had formatted this in NTFS file system. NTFS file system is always recommended as we can do the logical partitioning of external drive in NTFS. In my next video, we'll explore the easiest way to partition external drive. So, if you have not subscribed my channel yet, please hit the subscribe button to get the latest updates and resolve your query in Windows platform. Here we can secure our drive with OneTouch password. Before going into it, here is the option to safely eject external drive.

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. La virgua, la murga. Mirchi, murga.
1: Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहा है मुझसे हूज दिस।
1: कौन बोल रहा है?
2: और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये।
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बने। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: ये पकड़ा।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे आए।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: दिस इज समथिंग

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मोहिनी मोहिनी मोहिनी, पूरा एयरपोर्ट बस इसी आवाज से गूंज उठा था। पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। तो देखो, मुझे पता है कि पूरे दिन की थकावट अगर तुम्हें मिटानी है ना, तो बस यहाँ पे आने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तुम्हारे मेरे बीच में सिर्फ एक ही चीज होती है, और वो है दीज एवरग्रीन रेट्रो सॉन्ग्स, और ऑफ कोर्स इन गानों के पीछे की कहानियां, उस रेट्रो जमाने की फिल्मों के पीछे की कहानियां। तो मैं अपना होमवर्क पूरा करके आती हूँ। आज जब मैं कह रही हूँ मोहिनी मोहिनी, तो बताओ कौन सी फिल्म पे एकदम रिसर्च करके आई है श्रेया। फुल होमवर्क, एब्सोल्युटली करेक्टली एप्टली डन। नहीं समझ में आया तो एक काम करो, कुछ गानों के उस पर जब मैं मिलूंगी तब बताती हूँ, तब तक सोचते रहो, फिर से रिपीट करती हूँ मोहिनी मोहिनी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे 2 मिनट दे सकते हैं?
3: हाँ जी बोलिए।
4: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
3: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्ज
5: सर, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
3: कौन बोल रही है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
3: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
6: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
3: हेलो कौन बोल रहा है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
3: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
5: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
3: हेलो मैडम।
4: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
3: कौन बोल रहा
4: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
3: अभी कोई और बोल रही थी।
4: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
3: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
7: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
3: कौन बोल रहा है?
4: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
3: 2 दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
8: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
3: कौन बोल रहा है भैया?
4: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
3: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
9: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
4: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
3: कोई बोल रहा
4: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
10: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
11: थैंक यू।
12: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: मोहिनी मोहिनी एक ऐसी फिल्म जिसके पहले माधुरी दीक्षित ने भी नहीं सोचा था कि वो इंडिया की नंबर वन हीरोइन बन जाएंगी आफ्टर डूइंग दिस फिल्म। पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ जैसे ही मैं मोहिनी मोहिनी कहती हूँ तो ऑफ कोर्स आपको याद आ जाता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। वेल, आज बात करेंगे फिल्म तेजाब की। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित वॉज कास्ट ऑपोजिट अनिल कपूर। इस फिल्म में एक्चुअली बहुत सारे स्टार्स थे, चंकी पांडे थे, किरण कुमार थे, सुरेश ओबेरॉय थे, ऑफकोर्स अन्नू कपूर प्लेड अ वाइटल रोल, और माधुरी दीक्षित ने तब तक कुछ खास कदम नहीं जमाए थे और उनको लगा था कि वो इतने सारे स्टार्स के बीच में कहीं ना कहीं खो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इवन दो द रोल वॉज इन दैट ग्रेट दैट शी गॉट, लेकिन द सॉन्ग दैट शी गॉट वॉज 1 2 3। कहिए क्या सुनेंगे आप? ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि कहते हैं कि जिस कंपनी ने कैसेट्स रिलीज किए थे, दी ऑडियो कैसेट्स, उस समय यू नो कैसेट्स ही चला करते थे, तो उस कंपनी को बार बार लॉट में नए कैसेट्स का बैच रिलीज करना पड़ रहा था, बनाना पड़ रहा था, बिकॉज खत्म होते जा रहे थे मार्केट में। हाँ जी, सो तेजाब का ये वाला गाना भी थोड़ी देर में सुनाऊंगी, कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।
1: गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
1: गुड नाइट।
2: अच्छा, गुड नाइट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Ay, ahora va.
1: Ahora va.
2: It's Gunny.
3: Only on Radio Mirchi, New York. It's hot.
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

अच्छा, किस किस को शाहरुख खान का मन्नत अंदर से देखना है? देखना है तो चलो मैं लेके चलती हूँ। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। आज जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है तेजाब। 1988 की ये जो फिल्म थी, उसके बाद ना जब ये फिल्म रिलीज हुई तो 1990 तक आते आते माधुरी दीक्षित बिकेम द नंबर वन हीरोइन ऑफ इंडिया। वेल एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मन्नत की बात कर रहे थे हम। देखना है तो आपको ये फिल्म फिर से देखनी पड़ेगी, क्योंकि शायद जब ये फिल्म बनी तो आपको नहीं पता होगा। इस फिल्म में अनुपम खेर का जो बंगलो दिखाया गया है और उसके शॉट लिए गए हैं, वो बंगलो अंदर से भी दिखाया गया है, बाहर से भी दिखाया गया है, वो है शाहरुख खान का मन्नत। आई एम श्योर अब इतने साल हो गए, उसमें बहुत सारा रेनोवेशन हो गया होगा, बट यही वो बंगलो है जो कि शाहरुख खान ने खरीदा था। यस, सो इन केस यू वांट टू हैव अ लुक, आपको तेजाब फिर से देखनी पड़ेगी। अनुपम खेर वाला घर आपको अब पता है ना कि शाहरुख खान का मन्नत है। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

वेटर इतना घबरा गया था कि उसने एम्बुलेंस बुलाई, और मैनेजर इतना घबरा गया था होटल का कि उसने तो सीधे पुलिस बुला ली थी। पुरानी जींस पे आप हो श्रेया के साथ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म टुडे तेजाब। अब हुआ ये कि गाना है ना सो गया ये जहां, इस गाने से पहले राइट बिफोर द सॉन्ग देयर वाज अ फाइट सीक्वेंस दैट वाज शॉट। अब ये फाइट सीक्वेंस शूट हो गया, लेकिन भाई एक्टर्स ये भूल गए, जैसे कि चंकी पांडे, अनिल कपूर एंड ऑल ऑफ देम, कि उन्होंने ना मेकअप नहीं उतारा। रात का समय था, ये गाना शूट हो रहा था, गाड़ी में उन्हें इतनी भूख लगी कि पास के एक होटल में चले गए। होटल वाले देख करके घबरा गए कि ये क्या खून से लदे पदे, एकदम खून ही खून हर जगह दिख रहा है, ये लोग कौन आए हैं। तो जो वेटर था वो इतना घबराया, उसने एम्बुलेंस बुला ली कि भाई इनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, और जो मैनेजर था उसने तो पुलिस को बुला लिया कि हाँ कोई ऐसा वैसा केस तो नहीं है। बाद में उनको बताया गया कि अरे भाई हमने मेकअप रिमूव नहीं किया है, हम सीधे सेट से आ रहे हैं। अब इस गाने की बात हुई है तो ये गाना थोड़ी देर में सुनाती हूँ। मजा आता है मुझे आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में। कम राइट बैक, दिस इज श्रेया ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: दो फिल्में अनाउंस तो हुई लेकिन वो कभी भी बनी नहीं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, शायद ये तरीका था टीनू आनंद का डिंपल कपाटिया को ट्रिक करने का। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया एंड शहनशाह फिल्म की बात हो रही है जिसपे अमिताभ बच्चन थे। इस फिल्म की स्टोरी, इस फिल्म की कहानी लिखने वाली थी जया बच्चन जी। अमिताभ बच्चन एक अरसे के बाद इंडस्ट्री में वापस आ रहे थे, पॉलिटिक्स उन्होंने तब ज्वाइन कर लिया था और इसीलिए वो फिल्में कर नहीं रहे थे। बट फाइनली पॉलिटिक्स को टाटा बाय बाय कह करके, यू टर्न मार करके फिल्में करने जब वो वापस आए तो शहनशाह वॉज द फर्स्ट फिल्म जिसका ऑफर उन्हें मिला था। अब ऐसे में डिम्पल कपाटिया के पास ऑलरेडी ऑफर जा चुका था, उनके पास साइनिंग अमाउंट जा चुका था टू प्ले द लीड इन दिस कैरेक्टर, एज इन टू प्ले द लीड फीमेल। फिर क्या हुआ, मीनाक्षी शेषाद्री को रातों रात उनके जगह पे रिप्लेस किया गया। अब टीनू आनंद जो ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे वो चाहते थे कि डिम्पल कपाटिया अपना साइनिंग अमाउंट वापस दे, लेकिन डिम्पल कपाटिया का कहना था कि मैं तो फिल्म छोड़ के नहीं जा रही हूँ, आपने मुझे रिप्लेस किया है तो मैं क्यों वापस करूँ। ये कंट्रोवर्सी उस टाइम की फिल्म मैगजीन्स ने जम करके छापी थी। सो टीनू आनंद ने एक कंडीशन रखी, ही सेड कि अगर वो उनका साइनिंग अमाउंट वापस कर देंगी तो वो अगले ही दिन अमिताभ बच्चन के साथ दो और फिल्में विद डिम्पल कपाटिया अनाउंस करेंगे। अब डिम्पल ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद बच्चन साहब, उनके लिए इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर था कि उन्होंने हाँ कहा, पैसे वापस दिए।
1: हेलो,
2: हाय, ये कॉल बैंक से है, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा, पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
3: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
3: हाँ जी,
1: हाँ बोलिए।
3: 33501।
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
4: हाय।
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए।
3: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
5: ये बेल जा रही है।
3: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई तू एक बात सुन, ये
3: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
1: किससे पूछे जा रहे हैं?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपका
1: पासवर्ड। क्या कंफर्म भाई, मेरा एटीएम कार्ड है
3: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: मुझे बताना है सबको थोड़ी ना, दुनिया में अल्लाह
3: नहीं तो
1: थोड़ी ना।
3: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है, कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते।
6: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
1: किसने दिया मेरा नंबर?
6: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
1: अरे मैं खुकड़ू को।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
8: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
9: You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere, because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
10: What?
9: My name is Anthony Gonsalves.
10: Gonsalves?
9: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट।

0: नंबर 420.
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस.
2: ओह माय,
0: राइट. मैं दुनिया पे अकेला हूँ.
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री.

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: हाउ क्यूट,
0: राइट।

0: चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो, सेबेस्टियन।
2: नो,
1: गोल्डी सोल्डी।
2: नो, एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस, एंथनी गोंसाल्विस।
3: तीन शहर और 17 दिन एक गाने को शूट करने में लग गए थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर हिट फिल्म तेजाब। वेल, इस फिल्म का सारा होमवर्क करके लाई हूँ मैं, और जब मैं रिसर्च कर रही थी ना, तो मुझे पता चला कि ये वाला गाना, ये जो आप सुन रहे हो ना, दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग विच इज़ बाय नितिन मुकेश, क्या हमिंग है। वेल, ये गाना जो अलका याग्निक के साथ उन्होंने गाया, इस गाने को क्योंकि पूरा रात में शूट किया जा रहा था, हाँ, कि टीम बैठी हुई, एज इन द एक्टर्स बैठे हुए हैं गाड़ी में, और वो रातों रात एक गाड़ी में बैठ करके रास्ता कवर कर रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने 3 सिटीज़ को क्रॉस किया था और 17 रातें लगी थी टू शूट दिस आइकॉनिक सॉन्ग।
4: सो गया है रास्ता।
3: आई नो, मुझे पता है कि आपको ये गाना पूरा सुनना है, तो ये लो पूरा, कमिंग योर वे ओनली ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ श्रेया।
4: Okay.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना। Only on Radio Mirchi, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फिल्म फेयर में ये कैटेगरी इस गाने के बाद शुरू हुई। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म तेजाब। वेल, ये जो गाना था, ये गाना इतना पॉपुलर हुआ और इसमें एक्ट्रेस का जो डांस मूव्स थे वो एवरीबडी वॉज कॉपिंग इन द एंटायर कंट्री। वो इतनी पॉपुलर हुई कि फिल्म फेयर की कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई इस कैटेगरी का अवार्ड भी होना चाहिए हमारे पास। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट सरोज खान। सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तेजाब मूवी का ये गाना, और माधुरी दीक्षित का परफॉर्मेंस ओहो चुम्मेश्वरी था। वेल, आफ्टर दिस सॉन्ग बिकेम सो ह्यूज एंड इट गॉट सो पॉपुलर कि उसके बाद फिल्म फेयर ने ये डिसाइड किया, कमेटी ने डिसाइड किया कि ये कैटेगरी यानी बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी होना चाहिए। एंड देन ऑफकोर्स सरोज खान ये अवार्ड लेने वाली पहली कोरियोग्राफर बनी थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, यही वाला गाना सुनना तो सुनाती हूँ ना। पक्का इस बार, पक्का प्रॉमिस, बस 3 गानों के उस बार। कम राइट बैक।

माधुरी दीक्षित यूएस गई थी अपनी फैमिली के साथ एक वेकेशन पे, एंड शी डिड नॉट नो कि रातों रात वो इंडिया की हार्ट थ्रॉप बन गई थी इस गाने के बाद. वेल, व्हेन शी केम बैक फ्रॉम यूएस, तो लोग ना एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मोहिनी मोहिनी मोहिनी. और इस गाने की तो मैं मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी, क्या ही बात करूं. वेल, कहते हैं कि चार्ट बस्टर्स को इस गाने ने करीब 20 से 25 वीक तक नहीं छोड़ा था. एज एन इट वॉज टॉपिंग द चार्ट्स. यही गाना कमिंग योर वे ओनली ऑन पुरानी जीन्स मिर्ची पर. मैं हूँ श्रेया.

0: का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: Radio Mitri New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi, it's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

अच्छा कभी कभी ना फिल्म इतनी एंग्रॉसिंग होती है, इतनी एंगेजिंग होती है कि समटाइम्स ना लोग बहुत ऑब्वियस से सवाल भी नहीं पूछते। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ आज तेजाब फिल्म की बात हो रही है। तो क्या हुआ, अगर आप तेजाब देखोगे ना तो ब्रेक के पहले तक बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें नाना पाटेकर का सीन है, एज इन नाना पाटेकर ने शॉट किए हैं वो सीन्स, आपको दिखेंगे कुछ एकदम वाइटल वेरी इंपॉर्टेंट सीन्स। लेकिन ब्रेक के बाद सडनली नाना पाटेकर का कैरेक्टर ही गायब हो जाता है। लेकिन फिल्म इतनी इतनी मज़ेदार थी, इतनी अच्छी थी, बॉलीवुड का सारा तड़का उसमें लगा हुआ था कि लोगों ने ये सवाल किया ही नहीं कि अरे भाई नाना पाटेकर का हुआ क्या। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक विद मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं
1: हेलो।
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रहा है ये?
2: सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए, इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बन गए। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कुकड़ू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है अनिल कपूर की तेजाब मूवी को लेकर के। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ 50 वीक्स तक, 50 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पे राज किया था इस फिल्म तेजाब ने। अब हुआ क्या, तेजाब जब बन रही थी अनिल कपूर के पास डेट्स ही नहीं थी, ही वॉज बुक फॉर 2 ईयर्स। अब ये जो फिल्म की कहानी थी ना, ये कहानी एन चंदर ने बोनी कपूर को सुना दी। बोनी कपूर जो कि अपने भाई को लॉन्च कर रहे थे, अपने भाई

तेजसी नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये फिल्म। सो देन बोनी कपूर स्टेप्ड इन एंड ही टोल्ड डायरेक्टर एन चंदर कि एक काम करना, जिस भी दिन अनिल की कोई फिल्म की शूटिंग कैंसिल होगी वो दिन तेजाब का होगा। सो ऐसे करते करते अनिल कपूर के कई सारे शूट जो कैंसिल होते थे, अनिल कपूर चले जाते थे तेजाब के सेट पर। एंड दिस वॉज हाउ तेजाब वॉज मेड। इमेजिन, इतनी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म वो एक्चुअली में अनिल कपूर की, क्या बोलूं मैं, वो कैंसिल डेट्स पे बनी थी। कभी कभी हमें नहीं पता होता ना कि हम किसी चीज़ के लिए जिसके लिए शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं वो काम करेगी, या फिर जिसको बहुत कैजुअली ले लिया वो काम करेगी। पुरानी जीन्स पे श्रेया है आपके साथ, कम राइट बैक।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अनु कपूर जी को अनिल कपूर का चेक मिल गया था पुरानी जीन्स पे आफर श्रेया के साथ। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज अनु कपूर का असली नाम अनिल कपूर था। वेल, मैं बात कर रही हूँ फिल्म तेजाब की, एंड अनिल कपूर इस फिल्म के मेन लीड में थे और अनु कपूर फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर थे। अब क्योंकि अनु कपूर का रियल नाम असली नाम अनिल कपूर था, तो उनको ना अनिल कपूर का साइनिंग अमाउंट चेक पे मिल गया था। पहले तो उनको फिगर्स देख के यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, एंड देन ही रियलाइज कि ओहो, ये तो अनिल कपूर का चेक आ गया मेरे पास। वेल, आज तेजाब की बातें श्रेया के साथ चलती रहेंगी, कहीं मत जाना। गानों के उस पार फटाक से मिलो, आज तो हाईवे पे चलेंगे ना फिर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स पे श्रेया है आपके साथ, जाने का टाइम हो गया है, तो गड्डी में बैठो, लेट्स हिट द हाईवे। अच्छा, आज का मेरा हाईवे हिट उन पे है जिनकी लाइफ में वो ड्रीम गर्ल आ चुकी है। आई वो ड्रीम गर्ल जो किसी शायर की गजल होती है, झील क्या कमल होती है,
1: दिल में मोहब्बत है।
0: अगर ऐसी ड्रीम गर्ल है तुम्हारे पास तो उसे जरा करीब रखो, समझे, थोड़ी बहुत उसकी बात मान लिया करो यार। On that note, this is Shreya signing off. I will see you tomorrow. Khayal rakho apna. Good night.
2: Zindagi kaisi hai paheli.

0: तो हंसाए।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Gambana. Burka, burka. La viva la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
2: अभी कोई और बोल रही थी?
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है इसमें, कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
2: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है, नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आपसे सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
10: थैंक यू
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए

0: Milchi.
1: Escabala, poscabala, sacabala. Rambala. Burga, burga. La virtua la burga. Milchi, burga.
2: Hello.
3: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
4: विकी जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
4: 33501।
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विकी का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
5: हाय।
4: अच्छा ये बताओ, ये विकी का पासवर्ड क्या है?
5: विकी का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए।
4: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
6: ये बेल जा रही है।
4: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई, तो एक बात सुन, ये
4: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है।
2: हेलो
4: सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
2: किस से पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
2: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: मुझे बताना है सबको, थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना
4: होता है। आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
7: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
2: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं खुकड़ू को।
8: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट हिट हिट हिट गाना, हिट गाना, हिट गाना।
0: Radio Mirchi, New York. It's hot.

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हैबिट बिल्ड करना क्यों जरूरी होता है और ये हमारी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मैंने देखा ज्यादातर सुबह जल्दी उठते हैं क्योंकि उनको पता है कि और तो टाइम ही नहीं है, टाइम कहाँ निकालें। मैं कह रहा हूँ जो रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, अगर उसको ये और जो हमने एग्जाम्पल लिया कि रात को मैं 12 बजे सो रहा हूँ और आधे घंटे एक बार लास्ट में देख लेते हैं यार, कुछ तो फोन पे होगा, मैसेजेस चेक कर लिए, व्हाट्सएप चेक कर लिया, इंस्टाग्राम चेक कर लिया, कुछ और सोशल मीडिया एप्स हैं वो चेक कर लिया, और इसके चलते चलते 1 बजे तक मैं सो नहीं पाया। और फिर एक बार हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमने देखा वो मन में चलता रहता है, तो अगर बॉडी सो गया, मन नहीं सो रहा है, वो सोच रहा है, आपका ब्रेन जो है उसके बाद उसको प्रोसेस कर रहा है, तो शायद आपको गहरी नींद आने में और 1 घंटा लग जाएगा। तो सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो फ्रेश नहीं होते, तो एक तो फिजिकली आपको समय नहीं मिला, सोने कम सोए आप, और दूसरा है कि आपका मन जो आपका माइंड है वो फ्रेश नहीं है, ब्रेन जो है फ्रेश नहीं है। अब अगर मुझे इसमें डिसिप्लिन लाना है तो अभी इस वक्त जो शायद तमाम लोग गुजर रहे हैं इससे क्या कर सकते हैं?
4: पहली चीज आपने कहा कि हमने ये डिसाइड किया कि मुझे सुबह उठना है,
3: जी
4: फॉर एग्जाम्पल दैट इज माई गोल, अभी राइट नाउ ये मेरा रेजोल्यूशन है, ये मेरा संकल्प है दैट कि मुझे 6 बजे उठना है या जितने बजे भी उठना है। क्यों उठना है पहले वो जरूरी है।
3: हाँ, ये क्यों, हाँ, उठ के करेंगे क्या?
4: क्योंकि अगर मुझे किसी चीज का बेनिफिट नहीं पता होगा या उसे वो जो मुझे मिलता है ना प्राप्ति किसी चीज से, वो अपनी तरफ खींचती है।
3: बहुत बढ़िया, तो उसका एक वाई होना चाहिए, वाई शुड आई गेट अप, मैं क्या करूंगा,
4: मुझे क्या मिलेगा क्या। कोई भी हैबिट जब हम बनाना चाहते हैं तो हमें उससे कोई बेनिफिट तो होना चाहिए ना, कोई प्राप्ति तो होनी चाहिए ना। फॉर एग्जांपल मुझे वेट कम करना है तो क्या होगा, एक्सरसाइज करना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता,
3: बिल्कुल,
4: पर आप फिट होंगे, आप फ्लेक्सीबल होंगे, आप अच्छे दिखाई देंगे, तो वो एक आपको इंसेंटिव हो जाता है कि अच्छा आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड, बिकॉज इफ आई वर्क हार्ड देन आफ्टर 1 month आई विल फील लाइक दिस और आई विल लुक अ सर्टन वे।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची लव।

0: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: अर्ली राइजिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं और ये हमारी प्रोडक्टिविटी और माइंडसेट को कैसे स्ट्रांग बनाती है, आइए जानते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: अच्छी चीज शायद हम कर सकते हैं कि सुबह उठ के जल्दी उठना है या कोई भी चीज पे डिसिप्लिन लाना, कुछ भी करना है तो लिखना शुरू करो कि इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद क्या मुझे रिजल्ट चाहिए जो मैं देख पाऊंगा।
5: क्योंकि एक होता है त्याग, दूसरा होता है भाग्य। त्याग किसी को अच्छा नहीं लगता
4: जी, बिल्कुल।
5: भाग्य सबको अच्छा लगता है, व्हिच मींस इफ यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग देयर हैज टू बी सम बेनिफिट ना, उसमें कोई आपको फॉर्चुनेट फील होना चाहिए। तो आप अगर अपनी नींद त्याग कर रहे हैं या आप जल्दी सो रहे हैं या आप अपना फोन का समय गिव अप कर रहे हैं तो आपको कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, पहले तो मुझे वो भी पता होना चाहिए। तो हमें पता है सुबह उठने के क्या फायदे हैं?
4: बिल्कुल, मतलब अपार्ट फ्रॉम सिंपल थिंग्स की भाई, एक तो शांति होती है वहाँ पे, काम बहुत आसानी से होता है।
5: पहली चीज हो गई एनवायरनमेंट में बहुत प्योरिटी है,
4: शांति है। दूसरी बात है कि हम जब जल्दी उठते हैं तो हम हड़बड़ी में नहीं उठते, हम आराम से उठते हैं, कामली उठते हैं, शायद 5-10 मिनट अपने साथ स्पेंड भी कर सकते हैं। और उस समय क्या होता है, जो हमारा सारा दिन है फिर वो कामली निकलेगा, हड़बड़ी में नहीं निकलेगा। तीसरा मुझे लगता है सोचने का समय मिलता है तो हम अपना जो डे है वो प्लान कर पाते हैं कि आज मैं ये कर सकता हूँ, ये चीज़ें हैं जो बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, इस पे ध्यान दे सकता हूँ। क्योंकि मन जब शांत होता है तो सोचने की जो कला है वो बढ़ जाती है, क्षमता जो बढ़ जाती है, तो आराम से हम सोच पाते हैं कि आज हमको ये करना है। ये बहुत बड़े फायदे हैं। फिर बहुत सारे काम जो हैं, शायद बहुत दिनों से सोच रहे थे हम करना है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो 15 मिनट आज अखबार पढ़ना है, चाहे वो कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो देखना है, चाहे 15 मिनट अपने बच्चों को स्कूल ही छोड़ने जाना है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना है फैमिली के साथ, वो भी हो पाता है।
5: सो पहले मुझे ये क्लैरिटी चाहिए कि मुझे ये सारा जो आपने कहा कि एनवायरनमेंट बहुत प्योर है, मुझे अपने साथ समय बिताने के लिए टाइम मिलता है। क्योंकि लोग आजकल क्या कहते हैं कि मरने की भी फुर्सत नहीं है तो अपने साथ क्या समय बिताएं। बट यू नो व्हेन आई से कि मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है तो एक्चुअली हम सबसे ज्यादा किसको रिजेक्ट कर रहे हैं?
4: खुद ही हो।
5: मतलब मैं कहूँ आप मुझे फोन करें और मैं आपको कहूँ मेरे पास आपसे मिलने के लिए टाइम नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? यू विल फील रिजेक्टेड, आप रिजेक्टेड फील करेंगे। तो हम कितना समय से पहले तो खुद को ही रिजेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि ना हमारे पास अपने साथ बैठ करके बात करने का टाइम है। बात अपने से बात करना माना थोड़ा सा अपने मन से बात करना, अपने मन का कोई टाइम टेबल बनाना, ना हमारे पास अपनी बॉडी के लिए टाइम है।
1: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची लव।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: été.
1: Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: Brain drain क्या होता है और ये हमारी एनर्जी और फोकस को कैसे अफेक्ट करता है, आइए समझते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: कि जब हम किसी और को कहते हैं कि तुमसे बात करने के मेरे पास समय नहीं है, तो एक तरह से दूसरे वाले को रिजेक्शन लगता है। तो जब हम अपने लिए कहते हैं कि मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है, खुद के लिए मरने की फुर्सत नहीं है, तो हम अपना ही रिजेक्शन कर रहे हैं और हम सोच भी नहीं रहे, और धीरे धीरे इनहेरेंटली हमारे दिमाग में बैठता जाता है शायद,
5: क्योंकि कहीं ना कहीं कंडीशनिंग हमारी ऐसी हो गई है कि अपने लिए टाइम निकालना थोड़ा सेल्फिश है। तो हमें लगता है हमारा सारा टाइम या तो परिवार के लिए है या सारा टाइम हमारा वर्क के लिए है, पर हमें यह रियलाइज नहीं होता कि अगर हमने अपने लिए टाइम नहीं निकाला और अपने को चार्ज नहीं किया और अपना ध्यान नहीं रखा, तो अगर हमारे पास कुछ होगा ही नहीं तो हम परिवार और वर्क प्लेस पर देंगे क्या।
4: आपने एक बहुत अच्छी बात की कि अगर हमने अपने आप को टाइम नहीं दिया, अपने आप को चार्ज नहीं किया, ये जो चार्ज है, जैसे एक फोन जब डिस्चार्ज होता है हम उसको पावर एक सोर्स पे लगाते हैं तो चार्ज होता है, तो अपने आप से बात करने से हम अपने आप को चार्ज करते हैं, ये जरा समझाइए।
5: कभी कभी हमारे मन में बहुत क्लटर होता है, इतने सारे लोगों से हम मिलते हैं, इतना कुछ हम करते हैं, कई बार हमारे मन में कई प्रकार के नेगेटिव थॉट्स होते हैं, कल किसी से कुछ हो गया, आज कोई जरूरी मीटिंग है। नाउ व्हेन इफ आई डोंट स्पेंड टाइम विद माय सेल्फ, तो अंदर के थॉट्स में कई बार चिंता भी हो सकती है, क्या होगा, आज का दिन कैसे होगा, वो मीटिंग कैसे होगी, वो रिकॉर्डिंग कैसी होगी, या कुछ पास्ट का भी मन में चल रहा हो सकता है कि उन्होंने ऐसे क्यों किया, उन्होंने बताया क्यों नहीं, तो ये सारा क्लटर ही तो है ना। तो ये आपको और डिस्चार्ज कर रहा है, पता नहीं चल रहा। लेकिन जैसे वो आपके फोन में अगर बैकग्राउंड में भी कुछ एप्लीकेशंस चालू होते हैं, तो वो एप्लीकेशंस क्या कर रहे होते हैं, आपके फोन की बैटरी को डिप्लीट कर रहे होते हैं। सो इफ आई एम नॉट अवेयर कि मेरे मन में क्या चल रहा है, एंड मोस्ट केसेस में आजकल क्या चल रहा होता है, नेगेटिव ही होता है,
4: तो वो हमारे ब्रेन की बैटरी को डिप्लीट कर रहा होता है, ड्रेन कर रहा होता है,
5: ड्रेन कर रहा होता है, सोल पावर को ड्रेन कर रहा होता है।
4: तो ब्रेन ड्रेन एक्चुअली ये है, मतलब लोग हमारे देश से बाहर जा रहे हैं, वो ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन ड्रेन है।
5: वो ब्रेन ड्रेन है अलग प्रकार का, दैट इज ऑफ द नॉलेज एंड स्किल एंड एक्सपर्टीज एंड टैलेंट का
4: जी,
5: लेकिन ये है इनर पावर का। ये जो डिप्लीट हो रहा है वो है इनर पावर, वो अलग है, वो चीज अलग है, वो मेरे पास कोई एक्सपर्टीज है, कोई टैलेंट है, वो मैं अपने देश के लिए न यूज करके किसी और देश में यूज करके उसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो हम किसका नुकसान कर रहे हैं,
4: खुद का नुकसान कर रहे हैं,
5: खुद का नुकसान कर रहे हैं। तो थोड़ा समय अपने साथ बिताने का मतलब है कि जैसे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना कि इस मन में किस क्वालिटी के थॉट्स चल रहे हैं। जैसे आप किसी को, हमने शायद ये पहले भी कई बार लिया है कि हम किसी को देखते हैं तो देखकर हमें समझ में आता है कि वो बहुत खुश नहीं है या उसका मूड थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो हम उससे बात करते हैं। हमारा फैमिली का ही कोई हिस्सा, परिवार का ही कोई होगा, कुड बी आवर चाइल्ड, वाइफ, हस्बैंड, हम बात करते, कोई बात नहीं, हो गया ना, भूल जाओ ना, जाने दो ना, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, बहुत अच्छा होगा, हम कह रहे हैं आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, आपकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी होगी। सो दिस इज हाउ वी टॉक टू समबडी।
4: तो ये खुद के साथ भी करना है।
5: यस, क्योंकि ये आपको मोटिवेट करता है।
4: अच्छा,
5: ये आपको इंस्पायर करता है।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची लव।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: सिर्फ सोचना काफी नहीं, हर दिन प्रैक्टिस में लाना क्यों जरूरी होता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: के मन में नेगेटिव चल रहे हैं तो बाहर से हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है।
4: सी, बाहर से हेल्प नहीं, ये हमारा दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। जैसे आप अगर अच्छा खाना खाते हैं और आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये आप कोई अपने पर एहसान नहीं कर रहे, ये आप कोई बाहर से हेल्प नहीं ले रहे। ये एक जीवन जीने का तरीका है।
3: अच्छी संगत में रहो, अच्छा ही होगा तुम्हारे साथ।
4: अगेन, अच्छी संग भी दिन भर में जरूरी है। नाउ दिस इज वेरी वेरी बेसिक कि अच्छी संग इज सेकेंडरी। अच्छी संग इज सेकेंडरी। जैसे अगर आपको शरीर को हेल्दी रखना है, खाना तो खाना ही है ना, उसमें चॉइस है क्या कि खाना खाना है कि नहीं खाना है।
3: फ्यूल तो चाहिए।
4: ज्यादा से ज्यादा कोई 3 टाइम खाता है, कोई 2 टाइम खाता है, कोई 1 टाइम खाता है, पर खाना तो
3: खाना है,
4: खाना है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। अब खाना खाने के बाद आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, क्या खाते हैं, दैट इज सेकेंडरी, पर खाना तो खाना ही है ना। ऐसे ही मन को खाना तो खिलाना ही है ना। संग भी सेकेंडरी है। संग क्या है, दिन भर में आपकी कंपनी क्या है, आप क्या, वो भी एक सेकेंडरी। जैसी संगत वैसी रंगत तो होती है, लेकिन जैसे आपको खाना खाना ही है, ऐसे एक्चुअली में हम सबको हर रोज 10-15-20 मिनट अच्छा सुनना ही चाहिए।
3: बहुत अच्छी बात आपने कही कि जैसी संगत वैसी रंगत, वो तो आएगी, वो अच्छी बात है, लेकिन रोज एवरी डे एज ए नियम अगर हम 15-20 मिनट अच्छा पढ़ें, अच्छा देखें, अच्छा सुने, तो वो हमारे अंदर के जो हमारे अंदर बहुत कुछ चल रहा है उसको धीरे धीरे निकालने में, उसको फ्लश आउट करने, वो टॉक्सिन्स को निकालने में बहुत मदद करेगा।
4: जैसे आप रोज घर की सफाई करते हैं, लेकिन दिवाली पर आप ज्यादा अच्छी सफाई करते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं, है ना। तो कभी कभी साल में लोग किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, किसी रिट्रीट पर जाते हैं, किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट पर जाते हैं, दैट इज वंस इन अ ईयर। आप 3 दिन के लिए जाते हैं, आप रिचार्ज होकर आते हैं, पर आप जैसे आप रोज घर साफ करते हैं और दिवाली पर ज्यादा सफाई करते हैं, ऐसे हम साल में एक बार ही किसी कॉन्फ्रेंस रिट्रीट में जा सकते हैं, पर रोज भी तो मन की सफाई करनी है।
3: अच्छी बात है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची लव।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डिसिप्लिन का मतलब होता है चॉइसेस बनाना, पर सही चॉइसेस कैसे करें, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: क्या होता है जब आप, मैंने सब प्लानिंग कर ली, कल सुबह उठूंगा और फिर मैं ये करना है, मुझे ये बेनिफिट्स हैं, लेकिन आज मन नहीं कर रहा तो क्या करें?
4: तो वो दैट मोमेंट होता है, अगर आपको अपना डिसिप्लिन भी क्या है, इट्स ओवर अ पीरियड आप उस पे जीत पाते हैं, तो वो एक मोमेंट है। समझो आपने कहा कि वो मन नहीं कर रहा है। अब मन क्या होता है, एक प्रकार से दो लॉयर्स हैं जो आपस में लड़ते हैं ऑलवेज, आप हमेशा देखेंगे। तो आपके वो जो एक मिनट है ना, आप अभी हैं, आपको उठना है, लेकिन एक मिनट में एक थॉट आता है कि नहीं मुझे उठना है, मुझे करना है, मैंने सोचा है, और फिर दूसरा थॉट आता है जैसे आपने कहा क्या फर्क पड़ता है, कल से कर लेंगे, फिर ये मन कहता है दूसरा कि नहीं नहीं, इट्स लाइक दैट युद्ध अंदर चल रही होती है। किसकी युद्ध चल रही है? नेगेटिव और पॉजिटिव की युद्ध चल रही है। अब उस समय पर अगर आप थोड़े से फर्म रहे और आपने कहा मुझे उठना ही है, वहां आपने अपनी मेंटल टफनेस को बढ़ाया। विल पावर हर दिन बढ़ती है, कोई लेकर के नहीं आता है।
3: बहुत बढ़िया। सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि आज मन नहीं कर रहा इस स्टेटमेंट में, और आज मन नहीं कर रहा फिर भी करूंगा, इसी को शायद डिसिप्लिन कहते हैं।
4: सी बेसिकली डिसिप्लिन क्या, आपने अपने मन के ऊपर जीत पा ली है। इसीलिए जो डिसिप्लिन लोग हैं ना, उनके लिए ये नहीं होता कि मन कर रहा है या मन नहीं कर रहा है, उनके लिए होता है अगर करना है तो करना है और प्यार से करना है, खुशी से करना है, ये भी नहीं कोई मजबूरी से करना है। इसलिए करना है क्योंकि ये जरूरी है, इसलिए करना है क्योंकि इसका ये बेनिफिट है। दैट इज समथिंग दैट दे हैव काइंड ऑफ कंडीशन देयर माइंड, ट्रेन देयर माइंड, तो उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो नेगेटिव थॉट भी नहीं आता। क्योंकि जब आप कोई चीज बार बार कर लेते हैं ना, वो फिर आपके नेचुरल नेचर जाते हैं।
3: कभी कभी क्या है कि डिसीजन तय है, आपको पता है इसके फायदे बहुत हैं और आप करने भी लगते हैं, जैसे आपने कहा धीरे धीरे आदत बन जाती है, तो आपने शुरू कर लिया, लेकिन शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं। लेट्स से आप काम कर रहे हैं, कभी ट्रैवल करना पड़ता है, सुबह 6 बजे की फ्लाइट है, कभी आपके बच्चे का कोई प्रोग्राम है जहां आपको जाना पड़ रहा है, जहां रात को लेट हो गया, कई बार हफ्ते में एक या दो दिन या महीने में 10-12 दिन जो आपने पाथ चुना उससे आपको हटा रहा है। और क्योंकि हमने ये अभी तक एस्टैब्लिश किया है कि डिसिप्लिन इज रोज थोड़ा करो, उससे आदत बनती है, तो शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हटाकर उस पे लगा जाए कि कोई बात नहीं कुछ भी हो हम ये करेंगे।
4: पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि वो एक डिस्ट्रैक्शन है कि वो एक जरूरी चीज है।
3: अच्छा,
4: क्योंकि जिस जो आपने एक लंबी लिस्ट बताई, उसमें कुछ एक तो जरूरी था।
3: जी,
4: समझो कोई बच्चे का प्रोग्राम है, एंड दैट आल्सो आई डोंट थिंक एंड्स एट 12 o'clock, आई रियली डोंट थिंक सो। सो जो मेजर चीजें होती हैं, जैसे आप कह रहे पार्टिंग है, नाउ यू हैव टू मेक अ डिसीजन, यहाँ डिसीजन आ जाता है, आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। अगर आपके लिए वो मॉर्निंग का जो टाइम है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप चूज करेंगे कि 9 बजे के बाद
3: मैं नहीं करूंगा,
4: मैं नहीं करता हूँ। मैं पहले करता था, उसमें मुझे कुछ प्राप्ति होती थी। सी देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, यहाँ पर बैठकर ये नहीं डिसाइड करें कि ये राइट है कि ये रॉन्ग है।

0: लेकिन मैं पहले वो करता था, उससे मुझे कुछ मिलता था, नाउ मुझे कुछ नया स्टार्ट करना है बिकॉज उसका बेनिफिट मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। मुझे वो मॉर्निंग का जो आवर अपने साथ बिताने के लिए चाहिए, या एक्सरसाइज करने के लिए चाहिए, या परिवार के साथ बिताने के लिए चाहिए, या वो जब मैं करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, एम्पावर्ड फील होता है, मुझे वो करना है, तो फिर मुझे यहाँ से कुछ कुछ कट करना पड़ेगा एंड इट विल बिकम ईजी क्योंकि आप कॉन्शियसली चूज कर रहे हैं मुझे वो करना है।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची लव।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड रिजल्ट को दिमाग में रखकर काम करना मोटिवेशन को कैसे बूस्ट करता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक दोस्त है, वो कहते हैं कि भैया मैं पार्टी सैटरडे नाइट को करता हूँ, तुमको जितने सैटरडे नाइट को रात को 2 बजे तक मेरे को बुलाना मैं कर लूंगा, मंडे टू फ्राइडे और संडे नाइट मेरे लिए, सो संडे टू फ्राइडे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, सैटरडे तुम बुलाओ मैं आ जाऊंगा। तो उसने अपनी जिंदगी में ये डिसिप्लिन बना के रखा है। दूसरा एग्जाम्पल जो आता है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं तापस, उसके बारे में कई बार बोलता हूँ मैं, मेरे एक्स बॉस रह चुके हैं। मुझे एक चीज़ उनकी माननी पड़ेगी, वो सुबह 6 बजे की फ्लाइट, वो एक ज़माने में बहुत ओवरवेट थे और उन्होंने फिर तय किया जब ऑलमोस्ट उनके टेस्ट बहुत नेगेटिव आने लगे कि अब मैं वज़न लूज़ करूँगा। वो इस हद तक चले गए कि जब सुबह 6 बजे उनकी फ्लाइट होती थी, वो सुबह 3 बजे उठ के जिम जाके या अपने घर पे जो जिम उन्होंने इंस्टॉल किया था वहाँ पे एक्सरसाइज करके फिर अपनी फ्लाइट लेते थे। तो मैं हमेशा उनको कहता था हैट्स ऑफ टू यू, कि ही सेड ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि लाइफ बार बार मौका नहीं देता, मुझे एक बार मौका मिला है एंड आई हैव टू इंश्योर कि अब जब मुझे ये सिग्नल मिल गया भगवान की तरफ से, अब मैं पूरी लाइफ डिसिप्लिन रहूंगा। तो सुबह 3 बजे करना पड़े या 4 बजे करना पड़े या 6 बजे करना पड़े,
4: उसमें ऐसा होता है कि आप कभी कभी जो कर रहे होते हैं ना, उससे आपको इतनी ज्यादा प्राप्ति हो रही होती है, इतना ज्यादा उससे बेनिफिट मिल रहा होता है कि आपके लिए वो मुश्किल नहीं होता। आपको 3 बजे सो करके उठ के भी 6 बजे उठना आपके लिए कम्फर्टेबल होता है, बिकॉज उससे मिलने वाला जो बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग भी कई बार 4 बजे उठते हैं मेडिटेशन के लिए, ना मोस्ट डेज वी स्लीप बाय 10:30 सो जाते हैं, तो नेचुरली 4 o'clock उठना बहुत कंफर्टेबल होता है। बट कई दिन ऐसे होते हैं, कोई इवेंट है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, 12 भी बज जाते हैं, सॉरी 1 पे बज जाते हैं, लेकिन तो भी
3: 4 बजे उठ जाते हैं।
4: वो एक हैबिट है, क्योंकि उस समय का जो आपको बेनिफिट है, उस समय की जो प्योरिटी है, उस समय जो आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ है, उस समय जो आप भरते हैं अपने आप को, वो खींच इतनी ज्यादा होती है कि आपको उस दिन कम समय मिला उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड सेकेंड थिंग आई हैव ऑल्सो फेल्ट, ये तो एक हो गया कि आपको उससे जो मिल रहा है, दूसरा डिसिप्लिन में एक चीज ये जरूर आती है कि आप वो कैसा भी हो, फॉर एग्जाम्पल आज आप थोड़े थके हुए, हो सकता है आज जब आप उठ करके मेडिटेशन करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने किया, आपने उसको ब्रेक नहीं किया, आपने उसको किया, तो जरूर आपको उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। मना आप अगर अपना 100% नहीं भी दे पाते तो भी उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची लव।

0: मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: डिसिप्लिन फॉलो करते हुए अगर आपको अंदर से कंटेंटमेंट और शांति महसूस हो तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। आइए इसी बात को थोड़ा और समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: छोटा था तब मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्लीप बैंक, और अभी जब आप बात कर रही थी कि कभी कभी हम 10 बजे सोते 4 बजे उठ जाते हैं, लेकिन किसी दिन अगर लेट भी हो गया तो भी आराम से उठ जाते हैं। स्लीप बैंक का जो कॉन्सेप्ट है, जब मैंने पढ़ा था जितना मुझे याद है, कि स्लीप भी एक बैंक की तरह होता है। वहाँ पे भी हमारा खाता होता है क्रेडिट और डेबिट का। और क्या है कि अगर आपको लेट से 6 घंटे सोना है, 7 घंटे सोना है, तो जिस दिन आपने 8 घंटे सोए, अगले दिन अगर आपने 1 घंटा कम सोया तो क्रेडिट डेबिट इक्वल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, घर पे शादी है, कोई इवेंट है एक्सेट्रा, आप कम सो रहे हैं। तो एग्जांपल लेते हैं कि हर रात को आपको 7 घंटे सोना है और आप 5 ही घंटे सोए, तो अभी 2 घंटे जो है वो डेबिट में चल रहा है, वो 2 घंटे मेकअप करने हैं आपको। ये मुझे याद है कुछ सालों पहले मैंने पढ़ा था। आप जो कह रहे हैं कि हम ज्यादा तो कभी सो नहीं पाते, मुझे तो ऐसा कम ही नजर आता है कि हम ज्यादा सो रहे हैं, हम 10-10 घंटे सो रहे हैं, बहुत कम होता है। ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत कम होता है। तो जो डेबिट वाला खाता है वो हमारा हमेशा चलता रहता है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वी विल हैव नो ऑप्शन, बट हमको क्रेडिट में बदलना पड़ेगा। तो अगर आप जो कह रही हैं कि कभी कम सो लिए तो चलता है, क्योंकि आपकी बॉडी वो बेनिफिट देख रही है कि जब मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा, लेकिन वो स्लीप बैंक से वो कॉन्ट्ररी नहीं है।
4: पर वो कभी कभी होता है ना, हमारे साथ क्या होता है, वो ज्यादा ज्यादा होने लग जाता है। कभी कभी वाले दिन कभी कभी होते हैं। आपके हफ्ते में कोई एक दिन था, महीने में कोई एक दिन था, वो आपका लाइफस्टाइल नहीं है। इट वाज दैट वन डे दैट यू वर ट्रैवलिंग, इट वाज दैट वन डे जब आपके परिवार में कोई बीमार था, वो रेयर केसेस होते हैं। पर आपका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत एक्यूरेट होता है,
3: समझ गया।
4: तो वो चल जाता है, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर एक्चुअली में पड़ता ही नहीं है। लेकिन हमारे साथ उल्टा होता है।
3: गुड पॉइंट।
4: हमारा लाइफस्टाइल ओवरऑल ठीक नहीं है। हम मेजोरिटी डेज अगर समझो लेट सो रहे हैं और हम सोचते हैं कि संडे को सारा कवर कर लेंगे।
3: तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारा कवर हो।
4: इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी गुड एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। उसमें एक आप देखेंगे आपकी खुशी और संतुष्टता भी बनी रहती है। आप कभी भी किसी को मिले जिनकी दिनचर्या बहुत अच्छी होती है ना, दे वेरी वेरी सैटिस्फाइड एंड कंटेंट।
3: बिल्कुल।
4: क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होता है, लाइक वी सेड कि आप मॉर्निंग में थोड़ा समय अपने साथ बिताते हैं, आप सेल्फ टॉक करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ये आपको भरता है इंटरनली। अगर आप ये सब कुछ नहीं करते हैं और आप सीधा काम करने लग जाते हैं तो आप थोड़ा अंदर से खाली हैं, और फिर आप सब कुछ कहाँ से चाहते हैं, बाहर से। तो फिर आपकी डिजायर्स बहुत होती हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये ऐसे बात करे, अप्रिसिएशन चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, क्योंकि आप अंदर से काफी खाली हैं। तो आप उस जगह पर जाकर देने की जगह और ही
3: ले रहे हैं।
4: यू नॉट फुल इनसाइड। सो यू नो सम लिटिल हैबिट्स, लिटिल लाइफस्टाइल चेंजेस, इट इज नॉट, वो दिखने में बहुत छोटी लगती है, बट इट ब्रिंग्स अ वेरी डीप सेंस ऑफ कंटेंटमेंट। आपकी आधी एंजाइटी तो वैसे ही खत्म हो जाती है। आप ये कहने में है सुबह उठना, लेकिन जो लोग सुबह उठते हैं, जिनके पास समझो ये 3-4 घंटे अपने लिए होते हैं, आप हमेशा देखेंगे दे वेरी वेरी कंटेंट। वो जैसे भाग नहीं रहे होते, दे लिव देयर डे, एक रिदम की तरह चल रहे होते हैं।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची लव।
5: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: कैसे डिसिप्लिन ही वो पावर है जो लाइफ के हर एरिया में ऑल राउंड सक्सेस लाती है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: प्राइजिंग चीज है क्योंकि मैंने डिसिप्लिन पे जितनी किताबें पढ़ी हैं, और कभी कभी तो डिसिप्लिन के बारे में नहीं है, माइंड कंट्रोल के बारे में है, मोटिवेशन के बारे में, मैनेजमेंट लेसन के बारे में, हर जगह एक रूल हमेशा वो कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो। सो आप जो कह रही हैं, विच इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग, और मैं हमेशा सोचता हूँ कि इसका इससे क्या लेना देना है, बट फिर पता चलता है कि सुबह उठने से बहुत सारी चीजें आराम से हो जाती हैं।
4: बायोलॉजिकल क्लॉक भी वैसा ही बना हुआ है। आप किसी को भी पूछें, चाहे साइंस के पर्सपेक्टिव से आप देखें, चाहे स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें, किसी भी पर्सपेक्टिव से आप देखें, सुबह उठने का बेनिफिट हर जगह बताया जाता है। आप नर्सरी के राय में देख लें, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी भी, वेल्दी भी और वाइज भी। अब वेल्थ का सुबह उठने से क्या लेना देना है, बट वेल्थ का क्या है, आपको सारा दिन जब काम करना है तो अगर शक्तिशाली मन होगा, शांत मन होगा, उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी, उसकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी होगी, वो सबके साथ मिल करके काम करेगा, तो वेल्थ का भी कनेक्शन क्या है, वेल्थ मुझे काम करना है, मैं शक्तिशाली तो होना चाहिए ना, तो हेल्थ भी आ जाती है, वेल्थ भी आ जाती है, हैप्पीनेस भी आ जाती है।
3: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची लव।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: क्या तुमने कभी नोटिस किया कि देसी लोग अमेरिका तो शिफ्ट हो जाते हैं लेकिन उनका सोल जो है वो बैक होम अपने देश में ही रहता है। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज प्रिसिला विद यू, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। ये वो शो है जहां पर तुम्हें मिलती है देसी गॉसिप्स, यहां वहां की बातें, अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स, ढेर सारी मस्ती मिर्ची एंड ऑफकोर्स मी, बोले तो प्रिसिला तुम्हारे साथ में। आज का दिन किक स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है, वो भी एकदम मिर्ची दार स्टाइल में। सो अभी एयरप्लेन मोड से बाहर निकलने का और एक्टिव मोड में आने का टाइम आ चुका है। आज का दिन कैसा जाने वाला है टोटली डिपेंड्स ऑन मॉर्निंग्स कैसे स्टार्ट होती है, और इसीलिए मैं बोले तो प्रिसिला आती हूँ लेकर तुम्हारे लिए म्यूजिक, मस्ती, मिर्ची एंड मच मोर। एंड कमिंग अप, बॉलीवुड वाइब्स, ढेर सारी फील गुड एनर्जी, काफी सारा गॉसिप एंड साथ साथ में अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स भी, एंड ऑफकोर्स यू हैव गुड कंपनी एके मी। मेरा नाम है प्रिसिला, मैं मिर्ची मॉर्निंग्स पर तुमसे मिलती हूँ। मुझे फटाफट से फॉलो कर लो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मुझसे ओवर शेयर कर सकते हो तुम, 9033 मिर्ची इज माई नंबर, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची दार बैंगर्स का टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Milci. Escabana, puscabana, sacabana.
1: Yabana.
0: Burga, burga. La virtua, la burga.
1: Milci, burga.
2: Hello?
3: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
2: कौन बोल रहा है?
3: और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये।
2: क्या मजाक चल रही है?
3: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
4: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बने। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कु।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: मेरा बिगेस्ट नाइटमेयर पता लाइफ में क्या है? वेकिंग अप वन मॉर्निंग एंड फाइंडिंग दैट माय होल वर्ल्ड हैज चेंज्ड ओवरनाइट. गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स. और अब चल रहे हैं आज की डेट पर, हम दोनों नहीं बल्कि पता करने की हिस्ट्री में क्या हुआ था. सबसे पहले रिवाइंड करते हैं 1886 पर, जब दुनिया का पहला कोका कोला बिका था इन अटलांटा. मतलब समवेयर वन अंकल जी प्रोबेबली टेस्टेड इट एंड सेड, ठंडा मतलब कोका कोला, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आमिर खान. देन 1933 आया, महात्मा गांधी स्टार्टेड अ 21 डे फास्ट फॉर सेल्फ प्योरिफिकेशन एंड सपोर्टिंग द हरिजन मूवमेंट. 1945 में ह्यूज मोमेंट वीई डे, विक्ट्री इन यूरोप डे. वर्ल्ड वॉर टू ऑफिशियली एंड हुआ था इन यूरोप एंड पीपल लिटरली डांस्ड ऑन द स्ट्रीट्स. देन 1970 में द बीटल्स रिलीज्ड लेट इट बी, their final studio album. Also big win for humanity today, 1980 mein WHO officially declared smallpox eradicated. That was medical world ka mic drop to the world. And today is also World Red Cross Day and Red Crescent Day. Huge love for all the real life heroes out there. अच्छा वैसे तुम भी हीरो बन सकते हो, फटाफट से जाकर मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पे. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल मिर्चीदार बैंगर्स कमिंग अप योर वे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और क्योंकि मदर्स डे इज राइट अराउंड द कॉर्नर, मिर्ची में इमोशंस का तड़का लगने वाला है। दिस वीक वी आर सेलिब्रेटिंग द एब्सोल्यूट सुपर हीरोज ऑफ आवर लाइव्स विद समथिंग सुपर स्पेशल कॉल्ड एज जर्सी मॉम्स। ये क्या है? We are introducing you to some of the coolest, strongest, funniest, most dynamic moms from New Jersey. The women balancing career, kids, culture, Costco runs and of course WhatsApp messages. And इन सब के साथ साथ मिर्ची पर भी वो प्रकट हो रही हैं। I mean, Avengers could never. And trust me, some of these stories will make you laugh, some might make you emotional, and some will remind you to finally call your mama back home. हाँ, आई एम टॉकिंग टू यू जिसने एक हफ्ते से मम्मी को कॉल नहीं किया है। सो ऑल डे लॉन्ग मिर्ची पर तुम सुनने वाले हो ये ब्यूटीफुल आवाजें, इंस्पायरिंग जर्नीज एंड फुल देसी मॉम एनर्जी दैट फील्स अ लॉट लाइक होम इवन व्हेन यू आर स्टक इन न्यू जर्सी का टर्नपाइक यलिंग एट द ट्रैफिक। एंड अभी अगर मूड ट्रैफिक से खराब हो रहा है तो मैं तुम्हारा मूड सेट कर रही हूँ ना मिर्ची दर बैंगर्स तुम्हारे लिए चलाकर। प्रिसिला हूँ मैं मिर्ची मॉर्निंग्स पर, फटाफट से जाकर मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: यार मुझे लगता है न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी का वेदर अगर कोई पर्सन होता तो वो तुम्हें टेक्स्ट बैक तो नहीं करता। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज प्रिसिला विद यू। सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स और वेदर का हालचाल जानने का टाइम आ चुका है। राइट नाउ इट्स अराउंड 49 डिग्रीज फारेनहाइट विद पार्टली क्लाउडी स्काइज, लेकिन विंड जो है वो अपने फुल एटीट्यूड में फील करा रही है 43 डिग्रीज फारेनहाइट। बेसिकली द वेदर इज सेइंग सरप्राइज शॉल लेकर बाहर निकलना। लास्ट 24 आवर्स में सिर्फ 1 मिलीमीटर की बरसात हुई, इतनी कि तुम्हारी कैट बाहर खुशी खुशी घूमकर वापस आ चुकी होगी। आज का लो जाने वाला है अराउंड 46 डिग्रीज फारेनहाइट एंड द हाई गोज अप टू 65 डिग्रीज फारेनहाइट। सो आफ्टरनून तक थोड़ा सा रिडेम्पशन मिल जाएगा, लेकिन अर्ली मॉर्निंग थोड़ी सी रेनी कंडीशंस एक्सपेक्टेड रहेगी। उसके बाद स्काइज आर मोस्टली क्लियर, नेचर भी अपेरेंटली थोड़ी सी इमोशनल क्लेंजिंग कर रहा है। एंड फन फैक्ट ये है कि आज का वेदर इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू यस्टरडे, सेम टेम्परेचर सेम ड्रामा, बस तुम्हारा दिन सेम टू सेम ना हो। सो आज के दिन लेयर के प्लेयर बनो, कैरी अ लाइट जैकेट विथ योर सेल्फ, अम्ब्रेला ले जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और साथ साथ में अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की कुछ ज्यादा जरूरत है। और मिर्चीदार वाइब्स बना के रखो मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ। सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स, कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट्स MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर कनेक्ट करो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। एंड राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hello, my desi people. This is Priscilla with you. Sun rahe the Mirchi Mornings. And ab sunne wale ho around the world kya chal raha hai. Yani ki
2: Mirchi Hour Gun 3.
1: सबसे पहले द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO हैज अलर्टेड 12 कंट्रीज आफ्टर अ हांटा वायरस आउटब्रेक लिंक्ड टू एन अटलांटिक क्रूज शिप. पैसेंजर्स फ्रॉम कंट्रीज इंक्लूडिंग द US, UK, सिंगापुर एंड कनाडा हैव ऑलरेडी लेफ्ट द शिप बिफोर द इन्फेक्शन वॉज कन्फर्म्ड. हेल्थ ऑफिशियल्स आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन वेरी क्लोजली. नंबर टू पर इंडिया हैज रिस्पॉन्डेड टू बांग्लादेश रिगार्डिंग द इशू ऑफ इलीगल इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी वेरिफिकेशन. इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है फास्टर कोऑपरेशन इन प्रोसेसिंग पेंडिंग सिटीजनशिप वेरिफिकेशन केसेज टू हेल्प विद स्मूदर रिपार्टेशन प्रोसीजर. डिप्लोमेटिक टॉक्स आर कंटिन्यूइंग बिटवीन बोथ कंट्रीज. And number three per cricket fans, chai pakdo, because reports say India's T20 captain Surya Kumar Yadav, aka Sky, could reportedly be replaced as captain, with Shreyas Iyer being considered. Apparently, selectors are reviewing performance stats very closely. And with that, we've come to the end of Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein Mirchi Mornings par. Connect karo mujhse Insta or X par. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033647244. Stay tuned and stay hot.
3: Wanna nudge all night? Do you feel alright? Wanna nudge all night?

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La firma la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
2: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या
2: कोई बोल रहा
3: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू।
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: तुम्हारी चाय कितनी भी ज्यादा गर्म क्यों ना हो, द टी दैट आई ब्रिंग फ्रॉम बॉलीवुड इससे ज्यादा गर्म नहीं होगी।
2: मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड लिसन अप, द मेकर्स ऑफ धुरंधर आर क्लियरली नॉट डन सर्विंग ड्रामा। प्रोड्यूसर्स ने रिसेंटली हिंट किया है दैट देयर इज अ बिग सरप्राइज स्टिल कमिंग लेटर दिस ईयर। हाँ जी, उन्होंने लिटरली कहा है वी आर नॉट डन विद धुरंधर येट, मतलब कि बॉलीवुड ने ऑफिशियली लर्न कर लिया है द आर्ट ऑफ टीजिंग अस इमोशनली एंड ऑल्सो डैमेजिंग अस इमोशनली अ बिट। Now fans are already putting on their FBI caps and speculating that we might get a behind the scenes documentary. And honestly, desi audiences love behind the scenes content. Hum log movie ke baad how did they make this movie dekhne mein zyada interested rehte? And can we all agree Bollywood surprises hit differently, especially around this time of the year jab logo ke paas zyada kuch karne ko hota nahi hai. Waise is weekend par karne ke liye bahut kuch hai because Mother's Day aa raha hai, and if you're still wondering what to gift mommy besides emotional stress, Tanishq लेकर आए हैं तुम्हारे लिए बहुत सारा स्पार्कल। Enjoy up to 20% off on diamond value and on making charges of gold jewelry this Mother's Day. साथ साथ में 0% का रिडक्शन है on exchange of gold above 18 carat. वैसे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। और अभी तुम्हारे लिए मिर्चीदार बैंगर्स में प्ले करने वाले हूँ सिर्फ और सिर्फ मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मेरा नाम है प्रिसिला, कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

मिर्ची मॉर्निंग्स एंड हेलो माय बर्थडे स्क्वाड. लेट्स फाइंड आउट आज तुम्हारे साथ कौन से सेलिब्रिटीज हैं जो केक कट कर रहे हैं. सबसे पहले वी हैव मॉडल एक्ट्रेस ओलिविया कल्पो अलोंग विद एरो स्टार स्टीवन एमिल. म्यूजिक लवर्स, तुम्हारे बर्थडे ट्विन्स में है एलेक्स वैन हेलन, डैरन हेज फ्रॉम सैवेज गार्डन एंड आवर वेरी ओन लेजेंडरी गोवन म्यूजिशियन रेमो फर्नांडिस एंड साथ साथ में 90s के सुपरस्टार एनरिके इग्लेशियस हु इज टर्निंग 50 टुडे. और साथ साथ में अक्टूबर 2 को क्या हुआ था ये बोलने वाले विजय सालगांवकर के स्पिरिचुअल आइकॉन स्वामी चिन्मयानंदा जी भी आज ही के दिन इस धरती पर पधारे थे. सो अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे तो बिग हग्स, बिग ब्लेसिंग्स एंड मे योर ईयर हैव लेस स्ट्रेस एंड मोर डायरेक्ट डिपॉजिट्स. एंड विद दैट चलते हैं मिर्चीदार बैंगर्स सुनने के लिए ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला, कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, That is MIRCHIPRIS. WhatsApp पर मुझसे वो शेयर कर सकते हो 9033647244 पर. एंड अभी चिपक के बैठने का यहीं पर. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Alright, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is मिर्ची मॉर्निंग्स. और अब बारी आ चुकी है सोना एंड चांदी का रेट जानने की.
2: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड रीडिंग एट $4,600. $4,600 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेंड कर रहे हैं, जो पिछले हफ्ते से थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड पर है. आने वाले मदर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, 0% इंटरेस्ट पे, 0 डाउन पेमेंट के साथ आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए 12 इंस्टॉलमेंट्स में ज्वेलरी घर लेके जाएं और बिना किसी इंटरेस्ट के राज ज्वेल्स की टीम को पैसे दें. ये बहुत यूनिक फाइनेंसिंग ऑप्शन है ज्वेलरी की, जिसके अंदर आप पहली 12 किस्तें पे करने के बाद सेम क्रेडिट कार्ड दोबारा यूज कर सकते हैं नेक्स्ट परचेज की राज ज्वेल्स के साथ. सो आइए मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं RajJewels.com के साथ. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू.
1: एंड देयर यू हैव इट, मिर्ची पर गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में. और अब मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: अर बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात होर सी।
1: अर 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
3: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
3: हाँ जी,
1: हाँ बोलिए।
3: 33501।
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
4: हाय।
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना,
3: हाँ।
4: धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए।
3: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
5: ये बेल जा रही है।
3: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई तो एक बात सुन, ये
3: आपके पास
1: है?
3: आपके पास पासवर्ड होगा?
1: 33501।
3: हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
1: किससे पूछे जा रहे हैं?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
1: ये क्या कंफर्म भाई, मेरा एटीएम कार्ड है
3: ये। एटीएम तो आपका, तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: मुझे बताना है सबको, थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह
3: नहीं, तो आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते हैं।
5: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
1: किसने दिया मेरा नंबर?
5: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
1: अरे मैं कुकड़ू को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर टाइम जहाँ पर हम राशियों की बात करते हैं.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: एरीज यानी मेष राशि, टुडे रिलैक्स करो यार. यूनिवर्स हैज योर बैक इवन इफ योर कॉफी मशीन डजंट. वीकेंड वाइब्स आर लोडिंग. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू. लकी नंबर इज 17. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, कॉन्फिडेंस तो फुल बॉलीवुड हीरो लेवल का है आज, लेकिन काम रहना जरूरी है. हर ईमेल को पर्सनल अटैक मत समझना. लकी कलर फॉर यू इज सेज ग्रीन. लकी नंबर इज 42. जेमिनी यानी मिथुन राशि, समवन माइट ट्राई टू प्रोवोक यू टुडे. डोंट रिएक्ट. रिमेंबर, साइलेंस स्केयर्स अनोइंग people the most. Lucky color is sunset orange. Lucky number is 9. Cancer yani kark rashi, patience is your superpower today. Jaldi ka kaam usually New Jersey traffic ban jata hai. Let things unfold naturally. Lucky color for you is pearl white. Lucky number is 28. Leo yani ki siha rashi, authority figure may act suspiciously helpful today. Matlab for your benefit ka hidden meaning aaj samajh jaoge. Put yourself first a little. Lucky color is crimson red. Lucky number is 3. Virgo yani kanya rashi, exciting energy around you. Bas wallet ko emotional support dene ki zarurat hai. Zyada shopping mat karna, matlab budget mein rehna. Lucky color is lavender mist. Lucky number is 21. And that's it for Mirchi Rashi Zone number 1. Baki bachi 6 rashiyon ko lekar abhi thodi si der mein wapas aaungi Mirchi Mornings par. Mera naam hai Priscilla. Mujhse connect kar sakte ho Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp ka number hai 9033 Mirchi, that's 9033 647 244. Stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

Radio Mirchi, New York. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: दूसरी कॉफी आते आते तक मुझे पता चल जाता है द शो इज एंडिंग। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स एंड अब रैप अप का टाइम है। बट बिफोर आई गो एक क्विक रिमाइंडर है कि मदर्स डे है इस संडे को, दैट इज 11th ऑफ मे एंड वी आर सेलिब्रेटिंग इट इन द मोस्ट होलसम वे पॉसिबल एट मिर्ची। स्पेशल फीचर आ रहा है विच इज कॉल्ड जर्सी मॉम्स। यस, ऑल डे लॉन्ग ऑन मिर्ची वी आर इंट्रोड्यूसिंग यू टू सम ऑफ द कूलेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, फनीएस्ट एंड most dynamic moms from Jersey. Women who came here, built homes away from home, balanced cultures, careers, kids, in-laws, and still somehow remember where everyone's passport is. These amazing moms are coming on Mirchi to share their stories, struggles, wins, sacrifices, losses, and beautiful little life moments with all of us. And honestly, our Desi moms deserve their own Netflix documentaries, right? So stay tuned through the day because these stories are full heart-touching with occasional mom-level savage moments also guaranteed. And hey, if your mom is iconic, which, let's be real, she probably is, तो साथ में बैठकर सुनना और मुझे भी फॉलो कर लेना। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। एंड राइट नाउ टाटा बाय बाय फ्रॉम मी, बट यू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
3: दीवाना
4: एक दीवाना शहर में
3: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।

पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम। मेरा नाम है श्रेया, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। अच्छा, मेरी और मेरी मम्मी की ना हमेशा एक बात पे आर्ग्यूमेंट होती है। मेरी मम्मी हमेशा एक चीज का ताना मारती है कि अरे अब तो कोई फैशन स्टेटमेंट बनता ही नहीं है, अब के जो सेलिब्रिटीज हैं, अब के जो हीरो हीरोइन हैं, उनकी इतनी पॉपुलैरिटी होती ही नहीं है जो हमारे टाइम पे होती थी। मतलब अगर शर्मिला टैगोर ने कुछ पहन लिया, शबाना आज़मी ने कुछ पहन लिया, या हेमा मालिनी ने कुछ पहन लिया, वो हम सारी लड़कियां कॉलेज में फॉलो करते थे। तो मैंने सोचा कि चलो अगर ऐसी बात है तो ज़रा ढूंढा जाए कि आखिर किस किस ने, कौन कौन सी हीरोइंस ने एक्चुअली में कुछ फैशन स्टेटमेंट्स को पॉपुलर किया और वो आज तक फॉलो होता है, जैसे कि शर्मिला टैगोर। अभी बताऊंगी, वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नफीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
3: हाँ जी बोलिए।
4: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
3: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्ज
5: सर, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
3: कौन बोल रही है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
3: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
6: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
3: हेलो कौन बोल रहा है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
3: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
5: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
3: हेलो मैडम।
4: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
3: कौन बोल रहा
4: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
3: अभी कोई और बोल रही थी।
4: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
3: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
7: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
3: कौन बोल रहा है?
4: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
3: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
8: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
3: कौन बोल रहा है भैया?
4: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
3: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
9: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
4: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
3: कोई बोल रहा है?
4: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा
10: हूँ। सर मेरी बात सुनिए सर, आप सर फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
3: थैंक यू।
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये बेल बॉटम पैंट्स जो हम लड़कियों को बहुत पसंद है ना आजकल, ये एक्चुअली में सबसे पहले पता है कौन लाया था? शर्मिला टैगोर। पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया। शर्मिला टैगोर ने कई सारी अपनी फिल्मों में ना ये बेल बॉटम पैंट्स पहने, और उसके बाद मेरी मम्मी बताती हैं कि कॉलेज में लड़कियां वही पहन करके आती थी, उनका वाला विंग लाइनर लगा करके। नॉट जस्ट दैट, बहुत सारे जो कुर्ताज जो कि फ्लारी प्रिंट वाले होते हैं ना, वो भी सबसे पहले शर्मिला जी लेकर के आई थी। पुरानी जीन्स पे ना आज मैं वो हीरोइंस के सारे स्टाइल स्टेटमेंट्स ढूंढ करके लाई हूँ जो उस जमाने में पहने गए या उस जमाने में किए गए और आज तक हम उसे फॉलो करते हैं। सो कम राइट बैक, अभी बताऊंगी हेमा मालिनी जी का फैशन स्टेटमेंट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ओवर साइज सनग्लासेस हम सबके पास कहीं ना कहीं पड़े होंगे जो कि बहुत ही कूल लगते हैं आजकल। लेकिन आपको पता है कि ओवर साइज सनग्लासेस, ग्लेयर्स, गॉगल्स या जो भी कह लो, वो सबसे पहले पता है कौन सी हीरोइन ने पहने थे? हेमा मालिनी जी ने। पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया। मैं बता रही थी ना कि एक दिन मेरी और मम्मी की बहुत आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, तो मम्मी ने मुझसे कहा कि श्रेया, जो भी फैशन स्टेटमेंट तुम लोग आज करते हो ना, वो हमारे टाइम की हीरोइंस ने किए थे और हम सब लड़कियां कॉलेज में या हॉस्टल में फॉलो किया करते थे। तो जब मैंने जाकर के थोड़ी रिसर्च की और इसके बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि जो ओवरसाइज एकदम आधे चेहरे को ढकने वाले जो सनग्लासेस है ना, वो सबसे पहले ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी जी इंडस्ट्री में लेकर के आई थी। एंड नॉट जस्ट दैट, वो वाइब्रेंट कलर्स, ऑरेंज, चटक ग्रीन, ये भी उनपे बहुत खूबसूरत लगता था। प्रिंटेड लहंगास, पहले जो हीरोइंस थी वो एक्चुअली में मोनो कलर पहनती थी यानी सिंगल कलर,

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

दो चोटी चटक रेड लिपस्टिक के साथ। मम्मी बताती है कि उनके हॉस्टल में ना एक टाइम के बाद सारी लड़कियां दो चोटी और साड़ी पहन के आती थी, दो चोटी और सूट पहन करके आती थी और उस पे रेड लिपस्टिक, पुरानी जीन्स पे। हाय, मैं हूँ श्रेया और मैं बता रही थी ना कि कैसे एक दिन मेरी और मम्मी का आर्ग्यूमेंट हो रहा था, तो मम्मी ने कहा कि आपके जमाने के हीरो हीरोइंस क्या स्टाइल स्टेटमेंट लाएंगे, फैशन स्टेटमेंट लाएंगे जो हमारे टाइम की हीरोइंस लेकर के आती थी और हम सब उसे फॉलो करते थे। सो खूबसूरत फिल्म अगर आप देखो, सिलसिला देखो, आपको रेखा जी दो चोटियों में दिखेंगी और वो भी साड़ी पे दो चोटियां। सो मम्मी बताती है कि जैसे ही खूबसूरत फिल्म आई रेखा जी की, सिलसिला आई जिसमें वो एकदम ब्यूटीफुल कलर की लिपस्टिक लगाई है ना, हर लड़की कोशिश करती है बन के ठन के आने की। वैसे रेखा जी के ना और भी स्टाइल स्टेटमेंट्स थे जो पॉपुलर हुए, बताऊंगी उनके बारे में भी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ज्योमेट्रिक प्रिंस इन्होंने सिलसिला में भी पहने पुरानी जीन्स पे। हाय मैं हूँ श्रेया और आज ना उस जमाने की हीरोइंस के लाए हुए फैशन स्टेटमेंट्स जो हम आज तक इस जमाने में फॉलो करते हैं ना वो ढूंढ करके लाई हूँ मैं। सो रेखा जी ना ज्योमेट्रिक प्रिंट्स पहनती थी और जंप सूट्स जो आजकल हमें बहुत पसंद है एक्चुअली में सबसे पहले रेखा जी ने पहने थे। खूबसूरत फिल्म ले लो, सिलसिला ले लो एंड सो मैनी ऑफ देम भाई। शी वॉज नोन फॉर हर बोल्ड लुक्स और फिर उनकी रेड चटक लिपस्टिक। ओहो हो वैसे रेखा जी की बिंदी भी ना बहुत पॉपुलर हुई थी, वो ब्लैक वाली भी और रेड वाली भी जो उन्होंने सिलसिला में लगाई है। आज ना ऐसी वो सारी हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट्स जो कि पूरे इंडिया में रेज बन गए थे, हर लड़की फॉलो कर रही थी, हर लड़की जो कॉलेज गोअर थी, हर लड़की जो हॉस्टल में रहती थी, हर लड़की वेल आज पुरानी जीन्स पे अगला किसका बताऊंगी। हाउ अबाउट जीना तमान? तो वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो, और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस,
3: कौन बोल रहा है
4: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
3: क्या मजाक चल रही है?
4: क्या मजाक चल रहा है ये? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए, इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
5: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बड़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कुकड़ू।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

डिंपल कपाड़िया के दो क्यूट जूड़ास, आपको पता है किस नाम से फेमस हुए थे? बॉबी जूड़ास। पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया। तो मैं बता रही थी कि कैसे मेरी मम्मी ना उस दिन मुझे बता रही थी कि उनके टाइम पे भाई फैशन स्टेटमेंट्स जो हीरोइंस लेकर के आती थी वो हर लड़की फॉलो करती थी, और स्पेशली मम्मी के कॉलेज और हॉस्टल में तो डेफिनेटली फॉलो होते थे। सो शी वाज टेलिंग मी कि डिंपल कपाड़िया जब बॉबी फिल्म में आई, अगर आप देखो ना फिल्म, तो उन्होंने कई सीन्स में दो क्यूट जूड़ा बनाया है, मतलब एकदम मिडल पार्टिंग करके अपने बालों के साथ। शी सेड कि वो इतने फेमस हुए कि हम सारी लड़कियां कॉलेज में ना वो छोटे छोटे जूड़े बना के जाते थे। वैसे जीनत अमान और किस चीज के लिए पॉपुलर हुई थी अभी बताऊंगी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मिनी ड्रेसेस ले लो, जंपसूट्स ले लो, हॉल्टर नेक ले लो या फिर शिमरिंग साड़ी ले लो, ये सब लाने वाली थी जीना तमान पुरानी जीन्स पे। मेरा नाम है श्रेया, जो उस जमाने की हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट्स, स्टाइल स्टेटमेंट्स की भी बात कर रही है जो इस जमाने तक हम फॉलो करते हैं। सो जीना तमान ने कई सारी फिल्मों में जंपसूट्स तो पहने ही हैं, साथ में मिनी ड्रेसेस, जो उस टाइम हीरोइंस बहुत कम पहनती थी, वो जनरली साड़ीज में ज़्यादा दिखा करती थी। पर जीना तमान ऑफकोर्स बहुत ही बोल्ड हीरोइन मानी जाती थी, तो शी वॉज द वन जो एक्चुअली में मिनी ड्रेसेस लेकर के आई थी हमारी इंडस्ट्री में, और उसके बाद ना लड़कियों ने उन्हें जम करके फॉलो किया था। वैसे ये डिस्को ईरा वाला वो जो शिमरिंग ड्रेस है जो हम पार्टीज में पहनने की कोशिश करते हैं, ये कौन लाया था अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
2: हे, तुमने कभी किसी से प्यार किया?
3: किया।
2: कभी किसी को दिल

हेलेन इतना एक्सपेरिमेंट करती थी अपने कॉस्ट्यूम्स के साथ, आज तुम हर पार्टी में वो शिमर वाली ग्लिटर वाली ड्रेस पहनने की कोशिश करते हो ना टू स्टैंड आउट। एक्चुअली में हेलेन जी ने ये शुरू किया था क्योंकि उन्होंने फिल्मों में बहुत सारे कैबरी सॉन्ग्स किए हैं ना, आशा ताई की आवाज होती थी, हेलेन जी का ग्लैमरस सेंसुअल डांस होता था और साथ में उनकी एकदम सीक्वेंस वाली शिमर वाली ड्रेस होती थी। कई बार तो वो फेदर्स को भी अपने बालों में लगा लेती थी, विच लुक सो क्यूट। सो पुरानी जीन्स पे ना आज उस जमाने की हीरोइंस जो ऐसे फैशन स्टेटमेंट्स लेकर के आई जो इस जमाने तक चलते हैं, श्रेया के पास होंगे। सो कम राइट बैक।

0: Radio Mitri, New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi, it's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
3: हे, तुमने कभी किसी से प्यार किया?
4: किया।
3: कभी किसी को

मुमताज साड़ियां तो आज भी चलती हैं पुरानी जीन्स पे। हाय, मैं हूँ श्रेया। और आज ना उस जमाने की हीरोइंस जो फैशन स्टेटमेंट लेकर के आई जो इस जमाने तक चलते हैं, बस उनकी बात हो रही है। सो एक तो मुमताज जी साड़ियों को एक डिफरेंट तरीके से ड्रेप करने का फैशन लेकर के आई थी। उनकी जनरली साड़ी स्पेशली इन द सॉन्ग बिंदिया चमकेगी, अगर आप ये गाना देखोगे ना तो उन्होंने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है, सैफ्रन कलर है राधा, और उसको ना राउंड राउंड राउंड करके उन्होंने पहना है और उसपे उन्होंने सिल्वर कलर की बिंदी लगाई है। मेरी मम्मी बताती हैं कि ये जो साड़ी थी वो मुमताज साड़ी के नाम से फेमस हुई। और मुझे लगता है कि आज भी जब हम वो रेडीमेड साड़ीज लेते हैं या फिर ऐसे ड्रेप कराते हैं ना, अगर आप किसी सैलून में जाओ, आप एक्चुअली में अगर बोलोगे कि मुमताज साड़ी की तरह ड्रेप कर दो तो स्टाइलिस्ट को पता चल जाता है कि उन्हें कौन सी साड़ी आपको पहनानी है। That was the craze. So, पुरानी जीन्स पे ना आज उस जमाने की हीरोइंस जो ऐसे फैशन स्टेटमेंट्स लेकर के आई जो इस जमाने तक चलते हैं। श्रेया के पास होंगे, so come right back.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
3: हाँ जी बोलिए।
4: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
3: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
5: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
3: कौन बोल रही है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
3: क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
6: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
3: हेलो कौन बोल रहा है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
3: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
5: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
3: हेलो मैडम।
4: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
3: कौन बोल रहा
4: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
3: अभी कोई और बोल रही थी।
4: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
3: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है इसमें, कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
7: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
3: कौन बोल रहा है?
4: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर इसमें।
3: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
8: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
3: कौन बोल रहा है भैया?
4: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
3: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
9: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
4: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
3: कोई बोल रहा है?
4: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आप सर रमेश बोल रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
10: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
11: थैंक यू।
12: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
13: आप सुन रहे हैं पुरानी जींस, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

पोल्का डॉट्स, बाप रे, ये तो मुझे लगता है शर्मिला जी ने भी पॉपुलर किया है और मुमताज जी ने भी, हेमा मालिनी ने भी कई सारी फिल्मों में पोल्का डॉट्स पहने। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड पोल्का डॉट्स आज भी इतने क्यूट, इतने चिक, इतने सुंदर लगते हैं, इतने कूल लगते हैं रादर। और ये जो प्रिंट था ना, ये हर हीरोइन ने पॉपुलर किया था, फिर चाहे वो शर्मिला जी हो, हेमा मालिनी हो, नीतू सिंह हो या फिर मुमताज हो। सो आज ना उन्हीं फैशन स्टेटमेंट्स की बात हो रही है जो उस जमाने में आए और इस जमाने तक हम फॉलो करते हैं। वैसे वापस आओ, कौन सा हेयर स्टाइल था जो एक्चुअली में एक हीरोइन के नाम पे इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी हम सैलून जा करके कहते हैं कि हमें ये वाला हेयर स्टाइल, इस हीरोइन का हेयर स्टाइल चाहिए। बताऊंगी वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप खुश रहा के साथ एंड टाइम जब आप और मैं बैठेंगे गाड़ी के शीशे नीचे करेंगे एंड वी विल हिट द हाईवे हाईवे। अच्छा एक बात बताऊं, आपके साथ ऐसा होता है आप किसी को अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते हो, जता नहीं पाते हो जब वो इंसान सामने होता है, और अगर वो इंसान सामने नहीं होता है, वो जैसे ही गायब होता है, तो एक्चुअली में फील होता है कि यार ये जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट बंदा है हमारे लिए। लेकिन ये वाली फील आती है किसी के जाने के बाद, थोड़ी देर के लिए जब वो गायब होता है ना, तो न जाने क्यों होता है जिंदगी में। कमिंग अप यही गाना आपके लिए, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ श्रेया, गुड नाइट।

दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन

0: मटक मटक लौंडों के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमॉन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट
1: बड़ो लोग

0: पल्ला सा रंग तेरा, पावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शकर शकर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Yeah. Heartbeat.

0: Yeah.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स पे आप खुश रिया के साथ एंड टाइम जब आप और मैं बैठेंगे गाड़ी के शीशे नीचे करेंगे एंड वी विल हिट द हाईवे
1: हाईवे।
0: अच्छा एक बात बताऊं, आपके साथ ऐसा होता है आप किसी को अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते हो, जता नहीं पाते हो जब वो इंसान सामने होता है, और अगर वो इंसान सामने नहीं होता है, वो जैसे ही गायब होता है, तो एक्चुअली में फील होता है कि यार ये जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट बंदा है हमारे लिए। लेकिन ये वाली फील आती है किसी के जाने के बाद, थोड़ी देर के लिए जब वो गायब होता है ना, तो न जाने क्यों होता है जिंदगी में। कमिंग अप यही गाना आपके लिए ओनली ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ श्रेया, गुड नाइट।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: Yeah, Meethi Mirchi, brighten up your day, we will find a way. On Meethi Mirchi, aha.
2: This is the future, man.

0: कसम से ऑफिस बेस्टीज की जगह ना कोई नहीं ले सकता।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, और मेरे हिसाब से हर इंसान की जिंदगी में अलग अलग फेजेस के हिसाब से अलग अलग दोस्त बनते हैं। हाँ, ये बात और है कि एक मेजर बेस्ट फ्रेंड जरूर होता है आपका, बट जब आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फॉर दैट मैटर ऑफिस में हो, हर जगह ना आपका अपनी वाइब के हिसाब से एक नमूना सा दोस्त जरूर बनता है, जो गलती से किसी दिन ऑफिस ना आए तो भाई साहब आपकी जिंदगी बिल्कुल इस गाने के जैसे हो जाती है। कसम से बता रही हूँ, आज तो मेरे चाय की चुस्कियों में भी मुझे तन्हाई ही नजर आ रही है। मैं बॉस की शिकायतें नहीं कर पा रही हूँ, हर एक घंटे पे चाय की टपरी पे जाके अपने क्रश को देखने की उम्मीद नहीं जगा पा रही हूँ, थोड़े बहुत काम के बीच में बहुत सारी मौज मस्ती करके टाइम पास नहीं कर पा रही हूँ। खैर, मैं यहाँ आ चुकी हूँ अपनी तन्हाई मिटाने आपके साथ। आप भी यहाँ बरकरार रहिए मेरे साथ। बहुत सारी गपशप।

0: Milci. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La firma la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
3: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
3: हाँ जी,
1: हाँ बोलिए।
3: 33501।
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है, एटीएम वाला।
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
4: हाय।
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए।
3: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
5: ये बेल जा रही है।
3: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई तू एक बात सुन, ये
3: आपके पास
1: है?
3: आपके पास पासवर्ड होगा?
1: 33501।
3: हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
1: किससे पूछे जा रहे हैं?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
1: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
3: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना, दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना।
3: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते।
5: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
1: किसने दिया मेरा नंबर?
5: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
1: अरे मैं कुकड़ू को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ये पकड़। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

यार अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। बंदर में बॉबी देओल है बंदर में। अरे अरे, ये अपकमिंग फिल्म का नाम है यार, जिसका टीजर इज आउट एंड ट्रेंडिंग। सो माइंड यू, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं नन अदर देन अनुराग कश्यप, और ये पहली बार होगा जब बॉबी देओल और अनुराग कश्यप साथ कोलैब करेंगे यार। द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 5th of June, जिसमें बॉबी देओल का एक वाइल्ड न्यू अवतार देखने को मिलेगा इन दिस केओटिक रिलेशनशिप ड्रामा। नोरा फतेही को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने समन किया है, होना भी चाहिए यार, और ये हो रहा है फॉर केदी द डेविल के सॉन्ग, सर के चूनर के इंडीसेंट लिरिक्स और घटिया पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन के कारण। मैं तो कहती हूँ दीदी, जो एकदम से हालात जज्बात बदलती है ना अपने की, अरे मुझे हिंदी समझ में नहीं आती, मुझे तो बस मिल गया था ये काम करने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ रियलिटी शोज पे अच्छे से हिंदी समझती भी है, बोलती भी है, दैट इज वेरी डिप्लोमेटिक। हाँ, डायरेक्टर बेजॉय नंबियार और आनंद एल राय रीयूनाइट कर रहे हैं, और ये होगा फॉर दिस डार्क एक्शन ड्रामा फिल्म, जिसका टाइटल अभी तक डिसाइडेड नहीं है, बट जैसे ही डेट्स पता चलेंगी आपको जरूर बताऊंगी। वेल, अभी के लिए

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

अभिषेक बच्चन की गाड़ी बनी नाना पाटेकर की कैब। बॉलीपीडिया। एक मैं और एक तू है और हवा में जादू है, ओके मैं चुप हो जाती हूँ वरना आप रेडियो बंद कर दोगे। ओके मैं बात कर रही हूँ अबाउट द फिल्म ब्लफ मास्टर बाबू मोशाय, जो रिलीज हुई थी 2005 में, डायरेक्टेड बाय रोहन सिप्पी, जिसमें अभिषेक बच्चन, प्रियंका चोपड़ा और रितेश देशमुख लीड रोल्स में थे। सो बेसिकली इस फिल्म का एक सीन है जहां पे रितेश देशमुख का किरदार जो है वो भागता है एक गाड़ी में, और वो गाड़ी होती है अभिषेक बच्चन की, लेकिन अभिषेक बच्चन अपनी गाड़ी का पीछा करते हैं किसी दूसरी गाड़ी से, और ये जो गाड़ी इस्तेमाल की गई है उसका लाइसेंस प्लेट है MH01C9211, और बाबू मोशाय यही गाड़ी जो है कैब के तौर पे इस्तेमाल की गई है 2006 में रिलीज हुई फिल्म टैक्सी नंबर 9211 में, जिसमें वो गाड़ी और कोई नहीं नाना पाटेकर सर चलाते हैं। तभी तो मैंने कहा कि अभिषेक बच्चन की गाड़ी बनी नाना पाटेकर की कैब, और इसीलिए बोलती हूँ बड़े पर्दे पे जो कहानी आप देखने जाते हैं ना उसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां छुपी होती हैं, और वो ढूंढकर मैं आप तक लेकर आती हूँ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: कि ये दुनिया, ये महफिल और इस महफिल में पाए जाने वाले दो प्रजाति के लोग।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: सो माय डियर बाबू मोशाय, ये वाली प्रजातियाँ डिसाइड की जा रही हैं थेरेपी लेने वाले लोगों के मद्देनजर। माइंड यू, मेंटल हेल्थ के हिसाब से जो इंसान थेरेपी लेता है आइदर थ्रू अ साइकोलॉजिस्ट और अ थेरेपिस्ट, तो ये पहली प्रजाति वाले जो लोग हैं ना, थेरेपी में जो भी चीजें इनको बोली जाती हैं उसको फॉलो करते हैं कि हाँ भाई ये मेजर्स लेने होंगे, ये स्टेप्स लेने होंगे, अपने लाइफस्टाइल में ये चेंजेस करने होंगे, तभी आई विल बी अ बेटर पर्सन देन आई एम टुडे। वहीं दूसरी प्रजाति के जो महानुभाव है, ओहो, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की चुल है इनके अंदर, क्योंकि ये थेरेपी तो लेते हैं लेकिन थेरेपी में जो भी बात समझाई जाती है उसको बस उसी थेरेपी के सेशन में छोड़ के अपना दिमाग बाहर लेकर आ जाते हैं। यार इनकी दिनचर्या वैसे ही वापस से चलने लगती है, उसी लूप में वापस से फंस जाते हैं और फिर अगले हफ्ते थेरेपी लेते हैं। मतलब इन शॉर्ट इनको बस थेरेपी में पैसे डुबाने हैं। बाकी तो आप देख लीजिए इन दोनों में से किस प्रजाति के हैं। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। Stay tuned, it's hot.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidba la burka.
1: Milci, burka. Hello.
2: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
1: हाँ जी बोलिए।
2: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
1: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
3: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
1: कौन बोल रही है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
1: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
4: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
1: हेलो कौन बोल रहा है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
1: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
3: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
1: हेलो मैडम।
2: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
1: कौन बोल रहा
2: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
1: अभी कोई और बोल रही थी?
2: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
1: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
5: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: कौन बोल रहा है?
2: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
1: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
6: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
1: कौन बोल रहा है भैया?
2: सर रमेश बोल रहा हूँ, आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
1: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
7: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
2: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
1: कोई बोल रहा है?
2: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा
8: हूँ। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
9: थैंक यू
10: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इसी को बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: देखिए बाबू मोशाय, अगर आपके पास एंटरटेनमेंट के नाम पे सिर्फ 20 मिनट हैं आपकी जिंदगी के, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एंटरटेनमेंट का जिम्मा मेरे ऊपर है। और मैं आज पांच को पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ ऐसी पांच साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों की बात कर रही हूँ जो 20 मिनट के अंदर ही आपको मस्त एंटरटेनमेंट दे देंगी। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी कृति, जो 18 मिनट 51 सेकंड्स की मूवी है। अब नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट 10th रेस, जो 14 मिनट 48 सेकंड्स की मूवी है। रिलीज हुई थी 2011 में, डायरेक्टेड बाय गौरव मिश्रा, जिसमें राहुल बग्गा, नीरज शर्मा, उल्हास तैयद और पंकज त्रिपाठी लीड रोल्स में हैं। कहानी है चार मर्दों की जो साथ मिलके एक क्राइम कमिट करने वाले हैं। प्लान फ्लॉलेस है इनका, लेकिन जब सब कुछ एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर क्या होता है, यही देखने में तो मजा आएगा। आई रिपीट, द नेम ऑफ द फिल्म इज 10th Race. Moving on, number 3 pe let's talk about the film Raah, jo release hui thi in the year 2015. Duration is movie ka hai 14 minute 26 second aur isko direct kiya tha Prateek Payodhi ne. Film ke actors hain Swarnim Telang and Rishi Verma. बाकी अगर आपको गुड ओपन एंडिंग फिल्में पसंद हैं जो आपको कई दिनों तक हॉन्ट करें, तो दिस इज अ फिल्म टू गो फॉर, क्योंकि यहाँ दो स्ट्रेंजर्स एक कार राइड में हैं और दोनों अपने अपने डार्क सीक्रेट्स छुपा के बैठे हुए हैं। माइंड यू, वन ऑफ देम इज अ मर्डरर, जिसके बारे में आपको अंत अंत तक पता नहीं चलेगा। सो या, मेरी इस लिस्ट में और भी ऐसी ही दो फिल्मों की बातें बाकी है बाबू मोशाय, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल द न्यू स्टेडियम टू मिर्ची, श्रुति आपके साथ है।

0: प्यास है।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: छोटी छोटी चीजें भी बड़ा मजा दे जाती हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: एक्सक्यूज मी डर्टी माइंड, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, मैं शॉर्ट फिल्म्स की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों की, जो 20 मिनट के अंदर ही आपको अलग लेवल का मजा दे जाएंगी। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी कृति, नंबर 2 पे हमने बात किया 10th रेस के बारे में, नंबर 3 पे वी टॉक्ड अबाउट राह, अब बारी है नंबर 4 पे टू टॉक अबाउट रश्क। ये मूवी रिलीज हुई थी इन द ईयर 2020, डायरेक्टेड बाय राजीव वालिया, जिसमें भुवन अरोड़ा, पूजा भामरा, पलक पुरस्वानी एंड श्रीश शर्मा लीड रोल्स में हैं। बाकी इस फिल्म को देखने के पहले प्रिपेयर फॉर अ सीरियस माइंड गेम, हाँ, क्योंकि ये फिल्म रिवॉल्व करती है अराउंड अ बिजनेसमैन जिसके ऊपर अपनी वाइफ को मारने का इल्जाम लगा है। वेल, एज ही नरेट्स हिज वर्जन ऑफ इवेंट्स, जो सच्चाई है उसमें काफी सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आते हैं। वेल, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे, लेट्स टॉक अबाउट द मूवी इलायची, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2015, डायरेक्टेड बाय देवशीष मखीजा, जिसमें विभा चिब्बर, निमृत कौर और दिव्येंदु शर्मा हैं। वेल, इमेजिन करो बीइंग स्टक विद समवन फॉरएवर एंड एवर। सो बेसिकली ये मूवी एक डार्कली कॉमिक येट चिलिंग टेल है ऑफ अ हस्बैंड जो अपनी वाइफ को अकेला छोड़ने से मना कर देता है, इवन आफ्टर डेथ, माइंड यू। बाकी फिल्म में निमृत कौर की फ्रस्ट्रेशन इज ऑल टू रियल एंड द एंडिंग, भाई साहब, अनफॉरगेटेबल एंड हॉन्टिंग। नहीं देखी फिल्म तो अपनी वॉच लिस्ट में इसको जरूर डालना। बाकी मेरे इस लिस्ट में और भी कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलिंग शॉर्ट फिल्म ऐड करना चाहो, देन प्लीज डू दैट, MIRCHISHRUTI, यानी मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। बंदर में बॉबी देओल, बॉबी देओल है बंदर में। अरे अरे, ये अपकमिंग फिल्म का नाम है यार, जिसका टीजर इज आउट एंड ट्रेंडिंग। सो माइंड यू, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं नन अदर देन अनुराग कश्यप, और ये पहली बार होगा जब बॉबी देओल और अनुराग कश्यप साथ कोलैब करेंगे यार। द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 5th of June, जिसमें बॉबी देओल का एक वाइल्ड न्यू अवतार देखने को मिलेगा इन दिस केओटिक रिलेशनशिप ड्रामा। नोरा फतेही को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने समन किया है, होना भी चाहिए यार, और ये हो रहा है फॉर केदी द डेविल के सॉन्ग, सर के चूनर के इंडिसेंट लिरिक्स और घटिया पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन के कारण। मैं तो कहती हूँ दीदी, जो एकदम से हालात जज्बात बदलती है ना अपने, कि अरे मुझे हिंदी समझ में नहीं आती, मुझे तो बस मिल गया था ये काम करने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ रियलिटी शोज पे अच्छे से हिंदी समझती भी है, बोलती भी है, दैट इज वेरी डिप्लोमेटिक। हाँ, डायरेक्टर बेजॉय नंबियार और आनंद एल राय रीयूनाइट कर रहे हैं, और ये होगा फॉर दिस डार्क एक्शन ड्रामा फिल्म, जिसका टाइटल अभी तक डिसाइडेड नहीं है, बट जैसे ही डेट्स पता चलेंगी आपको जरूर बताऊंगी। वेल, अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मैं हूँ श्रुति, आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

दोस्तों फ्राइडे की ना एक अलग ही साइकोलॉजी होती है। शाम शांता लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, फ्राइडे आ चुका है। वैसे तो यार ये पूरा हफ्ता ना मंडे से लेकर थर्सडे तक बिल्कुल डिसिप्लिन मोड में निकल जाता है। अलार्म्स हो, मीटिंग्स हो, डेडलाइंस हो, ईमेल्स हो, और फिर फ्राइडे शाम आती है जैसे ना किसी ने ब्रेन को ऑफिशियली परमिशन दे दी हो कि बस अब रिलैक्स हो जाओ। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फ्राइडे का एक्साइटमेंट सिर्फ वीकेंड की वजह से नहीं होती, बल्कि उस फीलिंग की वजह से होती है कि यार अब ना कंट्रोल थोड़ा वापस हमारे पास आ चुका है। क्योंकि ड्राइव थोड़ी लाइटर लगने लगती है, म्यूजिक थोड़ा लाउडर लगने लगता है, और प्लान्स चाहे सिंपली क्यों ना हो, फिर चाहे चाय पीने का प्लान हो या बस घर पे चिल करने का हो, बस बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लगता है। तो यस, फ्राइडे की शाम एक रिमाइंडर होती है कि लाइफ ना सिर्फ रूटीन नहीं, ब्रेक्स भी है। तो चलिए इसी ब्रेक के साथ आपके लिए ये अगला गाना आपके फ्राइडे की शाम को धमाकेदार बनाने के लिए, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na vie tu la burga. Mirchi, burga.
2: Hello?
3: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहा है मुझसे हूज दिस।
2: कौन बोल रहा है
3: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
2: क्या मजाक चल रही है?
3: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
4: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़ गए। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कु।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

अब इसे कहते हैं ना सही मायने में शुभारंभ। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और क्या आपको याद है कि बचपन में मम्मी कोई भी नए काम के लिए जाना हो तो दही चीनी खाए बगैर जाने ही नहीं देती थी, और आइडियली बस शगुन के लिए एक चम्मच दही काफ़ी होता था। लेकिन घर पर बना मलाईदार दही का स्वाद इतना खूब होता था कि हम बच्चे एक कटोरी दही खा जाते थे। और यही रिचुअल यहाँ US में भी जारी है। फर्क इतना है कि अब ये रिचुअल दीप फूड के फार्म फ्रेश दही के साथ होता है। दीप फूड्स दही ना सिर्फ हार्मोन फ्री है बल्कि असली होम स्टाइल दही का स्वाद देता है। तो अभी भी एक चम्मच दही के बदले एक कटोरी दही खाने की आदत बरकरार है। और अगर आप भी किसी भी नए काम की शुरुआत दही चीनी खाकर करते हैं तो जरूर ले आइए दीप फूड्स फार्म फ्रेश दही, क्योंकि अच्छी आदतें कभी बदलनी नहीं चाहिए। जैसे कि मिर्ची पे ये हॉट सा गाना सुनने की आदत। सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

दोस्तों, एक अजीब सा मैजिक चल रहा है आजकल। जो गाने हम कैसेट या सीडी पे सुनते थे, वही आज रील्स पर ट्रेंड कर रहे हैं। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और क्या आपने भी नोटिस किया है कि यार आजकल ना ये जो सारे गाने हैं वो रीडिस्कवर हो रहे हैं, जो हमने कभी लाइव फील किए थे, जैसे कि लग जा गले, आज जाने की जिद ना करो, या फिर ये शाम मस्तानी है। ये सिर्फ पुराने गाने ही नहीं रहे, ये फिर से नए फेवरेट्स बन रहे हैं। और सिर्फ सुनने तक की बात नहीं है, इनके नए नए वर्जन्स आ रहे हैं, जैसे कि लो फाई वर्जन्स, अनप्लग्ड कवर्स, इंडी रिक्रिएशंस। हर जगह वही पुराने सुर एक नई आवाज़ में वापस आ रहे हैं। मतलब यार, एक ही गाना एक जनरेशन के लिए याद बन रही है और दूसरी जनरेशन के लिए डिस्कवरी। तो सच बताओ दोस्तों, इससे ज़्यादा खूबसूरत ब्रिज क्या हो सकता है, जहाँ माँ का फेवरेट गाना बेटी के प्लेलिस्ट में मैच हो जाए। और म्यूज़िक का तो यही चार्म होता है ना, कि टाइम भले ही चेंज हो पर मेलेडी अपनी जगह बना ही लेती है। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग चैलेंज हो जाए। आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा आपका फेवरेट गाना था जो फिलहाल रीडिस्कवर होता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI, और मैं बजाती हूँ अपना फेवरेट गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

बॉलीवुड ने ना हमेशा हमें ग्रैंड लव स्टोरीज दी है, बड़े बड़े डायलॉग्स, ड्रामेटिक रियूनियंस, वायलेंस इन द बैकग्राउंड. शमशादा लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि. लेकिन सच कहूँ ना तो सबसे प्यारी स्टोरीज वो लगती थी जहाँ माएँ क्वाइटली फ्रेम में होती थी, कभी टिफिन पैक करते हुए, कभी लाइट बंद करते हुए, तो कभी थक के ये पूछते हुए क्या तुमने खाना खाया. और बचपन में ना ये सब बहुत ही नॉर्मल लगता था, पर एक दिन हम घर से दूर हो जाते हैं और वही छोटी छोटी चीज़ें याद बनकर साथ रहती है. और शायद इसीलिए मदर्स डे सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं लगता, ये एक मौका लगता है जब हम अपनी माओं को थैंक यू कह सकते हैं. और जब उनके लिए कुछ चूज़ करने का वक्त आता है ना, तो मन करता है कि वो बिल्कुल उन्हीं की तरह हो, टाइमलेस, ग्रेसफुल और बिल्कुल दिल से. तो इस मदर्स डे फ्रॉम तनिष्क एंजॉय अप टू 20% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड ऑन मेकिंग चार्जेस ऑफ ऑल द गोल्ड ज्वेलरी. एडिशनली 0% डिडक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबाउट 18 कैरेट्स. मतलब अगर पुराना गोल्ड अगर एक्सचेंज करना है तो उस पर भी 0% डिडक्शन है. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. तो इस बार सिर्फ गिफ्ट मत दीजिए, उन्हें वो एहसास दीजिए कि उनकी चमक हमेशा घर का सबसे खूबसूरत हिस्सा रहेगी. और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
3: हाँ जी बोलिए।
4: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
3: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
5: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
3: कौन बोल रही है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
3: क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
6: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
3: हेलो कौन बोल रहा है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
3: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
5: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
3: हेलो मैडम।
4: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
3: कौन बोल रहा
4: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
3: अभी कोई और बोल रही थी।
4: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
3: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है इसमें, कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
7: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
3: कौन बोल रहा है?
4: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
3: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
8: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
3: कौन बोल रहा है भैया?
4: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
3: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं चाहिए मुझे।
6: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
4: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या
3: कोई बोल रहा है?
4: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आप सर रमेश बोल रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू।
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और शुक्र है शुक्रवार आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, वर्क वीक खत्म और वीकेंड शुरू। और ऐसे में तो वैसे तो बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग प्लान बनते हैं, कहीं पार्टी करने का प्लान बनता है, कहीं घूमने जाने का प्लान बनता है, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जिनका एकदम प्लान सेट होता है कि इस वीकेंड जहाँ जहाँ ओपन हाउसेज है वहाँ वहाँ हम जाएंगे और पूरी आइटिनरी फिक्स्ड होती है। तो अगर आप भी ऐसे हो और आपका भी प्लान है कि इस वीकेंड मैं ओपन हाउसेज देखने जाऊँगा और घर खरीदने का सपना है, तो मेरे दोस्त बीश की सलाह लिए बगैर बिल्कुल भी ओपन हाउसेज में मत जाना, क्योंकि लिए आपके लिए कौन सा मॉर्गेज पैकेज सही है वो बताएंगे मेरे दोस्त बीश। ओवर टू यू बीश।
1: शुक्र करो शुक्रवार है भाई और बहनों, मैं हूं आपका दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। फर्स्ट ऑफ ऑल द एंटायर लायन टीम वांट्स टू विश हैप्पी मदर्स डे टू ऑल लवली लिसनर्स एंड होप इट टर्न्स आउट बी अ फैबुलस डे। एंड टुडे द यूएस मार्केट्स एंड द वीक ऑन अ पॉजिटिव नोट on strong jobs report. For the longer term, what we need is supply and demand to get better aligned so that housing prices go up at a reasonable level, at a reasonable pace, and that people can afford houses again. Right now, the demand for housing has moderated due to uncertainties with what's going on around. Supply of homes has been strong, and Lion Mortgage is here to tailor your mortgage needs. So buying your dream home, call us today at 732-339-3155. Buying your dream home, Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6%. 20-year fixed mortgage rate, 5.875%. 15-year fixed mortgage rate, 5.375%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. It is lionmtg.com. Mortgage rates and lending has been very aggressive, and we have mortgage programs for all future mortgage rates. Where they are heading, no one knows. My friends, leave in today, so make that quick decision. And if you are refinancing, we are offering zero closing cost refinance option. So for all your mortgage needs, buying your dream home or refinancing, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful weekend. Thank you very much. Bye-bye.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, बॉलीवुड कॉमेडी का एक फेवरेट फॉर्मूला वापस आ रहा है, रिलेशनशिप कंफ्यूजन, ऑकवर्ड सिचुएशन और फुल ऑन फैमिली स्टाइल केओस। शाम शाम लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हां, पति पत्नी और वो दो का ट्रेलर आ चुका है और इसमें फीचर हो रहे हैं आयुष्मान खुराना, वमिका गाबी, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह, डायरेक्टेड बाय मुद्दर अजीज। वैसे ट्रेलर का वाइब तो काफी क्लियर है, रोमांस भी है, कंफ्यूजन भी है और वो टिपिकल अब कौन किसके साथ है वाली कॉमेडी। वैसे मेरा टेक तो ये है इस पे कि यार, अगर राइटिंग शार्प हुई ना तो जी हाँ, ये फिल्म वीकेंड लाफ्टर डोज जरूर बन सकती है। लेकिन मुझे इस बात से बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका है बॉलीवुड में कि यार कब तक वही घिसा पिटा फॉर्मूला यूज करोगे, क्या कभी कोई नई कॉमेडी नहीं आ सकती? और उससे भी ज्यादा मुझे कंफ्यूजन इस बात का है, इनफैक्ट क्यूरियोसिटी इस बात की है कि वाई आयुष्मान खुराना, वाई आर यू डूइंग सच प्रोजेक्ट्स। वैसे थोड़ा सा मुझे इस वजह से यू नो क्यूरियोसिटी तो है कि शायद आयुष्मान ने स्क्रिप्ट देखी होगी, पसंद की होगी, क्योंकि आयुष्मान की स्क्रिप्ट चूजिंग पे थोड़ा सा भरोसा तो है। तो हाँ, उस वजह से थोड़ा लगता है कि शायद कोई हटके स्टोरी हो सकती है, लेकिन ट्रेलर देख के लग तो नहीं रहा है कि ज्यादा हटके होने वाली। वैसे आप भी बताओ दोस्तों, आपको रिलेशनशिप कॉमेडी पसंद है या आप भी बोलते हो कि यार रियल लाइफ में इतना कंफ्यूजन है, अब वही चीजें स्क्रीन पर नहीं देखनी? जरूर बताना, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आयुष्मान का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

गाने को गाया है अरिजीत सिंह और अकासा ने, म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। सुनते रहिए जब तलक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज के डिनर के टेबल पे ना एक हीरो की फुल ऑन एंट्री हो रही है। जी हाँ, मतलब अगर घर का तंदूर बंद है इसका मतलब टेस्ट कॉम्प्रोमाइज करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दीप नान आता है उन्हीं खानदानी रेसिपीज से जो इंडिया के फाइनेस्ट किचन्स में पैदा हुई है। और एक बाइट में ही लगता है जैसे कि लखनऊ के बावर्ची और पंजाब के तंदूर मिलकर कॉन्सर्ट कर रहे हैं। यानी सॉफ्ट, बटरी और फ्रेश, ऐसा हर एक में घर का प्यार मिल जाए तो यार हर डिनर हर शाम नॉन स्टॉप डिलिशियस बन जाए ओनली विद दीप। तो दोस्तों आज ही ट्राई कीजिए दीप नान, ट्रेडिशन का तंदूरी फ्लेवर घर के अवन में भी शानदार। तो दीप खाओ तो जानो और हमें बताओ। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट।

दोस्तों, ओटीटी लवर्स के लिए भी मसाला रेडी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हां, मसाला माने प्राइम वीडियो इंडिया का लुक के एक ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें नजर आ रहे हैं किंग, राशि खन्ना, लक्ष्मीवीर सिंह सारण और पलक तिवारी। और वैसे तो यार, ट्रेलर देख के ना बहुत ही वाइब यूथफुल, केओटिक और थोड़ा सा कि ये गैंग वो गैंग है जो थोड़ी बहुत गड़बड़ करने वाली है, यही फील आ रहा था। और मुझे तो लगता है कि ऐसे शोज का चार्म तब होता है जब कैरेक्टर्स थोड़े फ्लॉड होते हैं, थोड़े फनी होते हैं और थोड़े ज़्यादा रिलेटेबल होते हैं। सो इट इज़ परफेक्ट फॉर दोज पीपल जो वीकेंड पे बोलते हैं कि यार कुछ लाइट लगाओ, दिमाग को ज्यादा तान नहीं चाहिए। तो आप भी बताओ दोस्तों, क्या आप ओटीटी पे कॉमेडी केओस देखते हो या फिर सीरियस थ्रिलर्स? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskaba la puskaba la sakaba la. Yabala. Burka burka. La vidba la burka.
1: Mirchi burka. Hello.
2: Hi. Ye call बैंक से है. आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है. हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा. पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दें और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं.
3: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज.
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर. ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ. एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं.
3: हाँ जी.
1: हाँ बोलिए.
3: 33501.
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ. शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको. ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला.
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा. हाँ मैं फोन मिलाता हूँ. हेलो डार्लिंग, हाय.
4: हाय.
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501. एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है.
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए.
3: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड.
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर.
5: ये बेल जा रही है.
3: हेलो भैया. हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई तो एक बात सुन, ये
3: आपके पास
1: है?
3: आपके पास पासवर्ड होगा?
1: 33501.
3: हाँ सर, 33501 है सर. हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है. मेरी बात सुनिए ना.
1: किस से पूछे जा रहे हैं?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर आपके पास.
1: भाई क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है.
3: ये एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना.
3: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है. कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था. बेकार में एप्लीकेशन डाल दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते.
6: विके, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है. 33501.
1: किसने दिया मेरा नंबर?
6: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था.
1: अरे मैं खुकड़ू को.
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और स्वागत है आपका शुक्रवार की इस खूबसूरत शाम में। देखिए दोस्तों, फैशनेबल फ्राइडे भी है और मदर्स डे भी है ओवर द वीकेंड। तो अगर आप अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग के लिए जाना चाहते हो या मम्मी के लिए कुछ बहुत ही प्यारा सा तोहफा खरीदना चाहते हो फॉर मदर्स डे, तो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, हमने इसके बारे में बहुत सारी बातें की है थ्रू द वीक। और मैं आपको बता दूं, गोल्ड रेट जो है वो स्टार्ट ऑफ द वीक से लेकर एंड ऑफ द वीक में किस तरह से बढ़े हैं ये तो हमें बॉबी जी बता ही चुके हैं, लेकिन आज का स्पेशल गोल्ड रेट क्या होने वाला है, चलिए पूछते हैं बॉबी जी से इन दिस गोल्डन आवर इन आवर स्पेशल सीरीज गोल्ड डिकोडर सीरीज, जहां होती है थोड़ी चमक थोड़ी समझ। तो बॉबी जी, स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में।
1: नमस्कार, हैप्पी फैशनेबल फ्राइडे टू यू सिद्धि जी, हैप्पी मदर्स डे इन एडवांस आपको और पूरे परिवार को। और देखिए, जब मदर्स डे के वीकेंड में हम मदर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए तैयार हैं, तो गोल्ड $4,715 $4,715 पर ट्राई ऑन ट्रेड कर रहा है। पिछले हफ्ते से गोल्ड थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन जो पीक थी इस साल के शुरुआत में $5,600 उससे बहुत नीचे है। सो मुझे लगता है कि कभी कभी आप हर लोवेस्ट पे खरीद नहीं सकते और हाईएस्ट पे बेच नहीं सकते, तो $4,700 बहुत अच्छा एक एंट्री पॉइंट बनता है अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहें। राज ज्वेल्स के साथ रिस्पॉन्सिबल फाइनेंसिंग ऑप्शन, जिसमें 0% डाउन, 0% इंटरेस्ट, बिना किसी हिडन फी, 12 इंस्टॉलमेंट पे अप्रूव होने पे, 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी एंड GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड हो या 18 कैरेट डायमंड ज्वेलरी, हम आपके लिए स्पेशल यूनिक फाइनेंसिंग कर सकते हैं इस मदर्स डे के लिए, वो खूबसूरत सा तोहफा जब आप घर ले जाना चाहते हैं सिद्धि जी, बिना किसी हिडन फी के। और अब मैं तैयार हूँ आपके उस खूबसूरत सवाल के लिए जो आप दोस्तों के साथ डिस्कस करना चाहती हैं।
0: तो बॉबी जी देखिए, बहुत सारे सवाल तो इसी बात पे आते हैं कि मदर्स डे के लिए क्या गिफ्ट खरीदा जाए, और इतने सारे ऑप्शंस आप अब हमें बताते हो, चाहे फिर वो गोल्ड के ऑप्शंस हो, डायमंड्स के ऑप्शंस हो या फिर सिल्वर कॉइन्स के। तो बस आज उन जो लेट लतीफ वाले हैं जिन्होंने शायद हमारा शो सुना नहीं हो या शायद सुन के समझा नहीं हो और अभी भी मदर्स डे के गिफ्ट नहीं खरीदे, उनके लिए फिर एक बार बता दीजिए कि क्या क्या ऑप्शंस है उनके पास फॉर मदर्स डे, अगर उन्हें मतलब वो चूज नहीं कर पा रहे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस।
1: देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। पहले तो मैं आपको बता दूं कितना खरीदें उसकी मैं एक बहुत सिंपल सी सरल भाषा में समझाता हूँ। अगर मेरी माँ के लिए हो तो बहुत प्यारी सी छोटी सी चीज, जैसे आई लव यू मॉम चांदी का सिक्का मैं उनको प्यार से दूं, तो उसके अंदर भी उनके चेहरे पे खुशी होगी। और दिल मांगे मोर, ये रहा मेरी बीवी मेरे बेटे की माँ के ऊपर मदर्स डे के लिए, कि जितना मिले उतना कम, दिल मांगे मोर। तो मुझे लगता है सिद्धि जी, हर आज फैशन ट्रेंड को फॉलो करने वाली माँ ये चाहती होगी कि उसके बच्चे या उनके हस्बैंड उनके लिए खूबसूरत सा तोहफा, जितना बड़ा जितना प्यारा हो उतना गिफ्ट करें। ऑब्वियसली दो एडवांटेजेस हैं, एक तो आप साथ साथ गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे आपकी चीज बन जाती है, मम्मी के लिए वो प्यारा मेमोरी से भरा तोहफा घर जाता है। और अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी शिप कराना चाहते हैं, तो मैं आपको फिर बता दूं, सिद्धि जी जिस सिल्वर कॉइन की बात कर रही हैं, वो पैम्प सर्टिफाइड सिल्वर कॉइन है, जिसपे आई लव यू मॉम लिखा हुआ है, इंस्क्राइब्ड है, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स आई लव यू मॉम, जो आप शिप करा सकते हैं एनीवेयर विद इन यूनाइटेड स्टेट्स। हमारे राज ज्वेल्स के इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके एक छोटा सा वीडियो है, जो जेन जी जनरेशन किस तरीके से वो भी इंस्पायर हो रही है अपनी मदर के लिए गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करते हुए। सो हम चाहते हैं कि आप राज ज्वेल्स इंस्टाग्राम पेज फॉलो करें और rajjewels.com विजिट करके आई लव यू मॉम पैम सर्टिफाइड सिल्वर कॉइन शिप कराने के लिए एनीवेयर विद इन यूनाइटेड स्टेट्स लॉग इन करें। सो आइए मिलके सेलिब्रेट करते हैं मदर्स डे विद rajjewels.com, क्योंकि मदर्स डे की ऑफर्स भी rajjewels.com पे इस मदर्स डे के लिए अवेलेबल है। आपकी गोल्ड परचेज के साथ किस तरह से गोल्ड का पार्ट या एक सिल्वर का ब्रेसलेट आप गिफ्ट घर ले जा सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी इवनिंग टू ऑल।
0: थैंक यू बॉबी जी। तो दोस्तों देखिए, चाहे आप ये अपनी आपकी पहली परचेज हो, स्पेशली कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फर्स्ट सैलरी से उन्हें अपने पेरेंट्स को कुछ देना होता है, मदर को कुछ देना होता है और वो ज्यादा सोच नहीं पा रहे होते हैं, तो आई लव यू मॉम गोल्ड सॉरी सिल्वर कॉइन इज द एप्ट गिफ्ट फॉर योर मदर्स। एंड उसी के साथ साथ दिल मांगे मोर आपकी वाइफ यानी आपके बच्चों की जो मदर है उनके लिए भी बहुत ही एप्ट गिफ्ट है। तो आज ही विजिट कीजिए rajjewels.com। आप, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।
2: एक बार

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हैरत से नहीं, एनर्जी से भर गया था ये ट्रैक, क्योंकि यार ये गाना फ्रॉम द एल्बम अनजाना अनजानी सुन के यार मूड ना एकदम ऑटो फ्रेश हो जाता था। लकी अली की वॉइस विशाल शेखर के बीट मैजिक क्रिएट कर देता था। और जी हाँ, हैरत वो गाना था जो रणबीर के जो बाइक राइड या कार राइड के सीन्स थे उन सबको भुलाकर अपने इनर ट्रैवलर को जगाने के लिए बनाया गया था। मतलब अगर वेगस में ड्राइव कर रहे हो तो मन में हैरत गाना तो बचता ही था। तो चलिए आज इस गाने का टेम्पो फील करते हैं। गाड़ी फुल स्पीड में मत चलाना क्योंकि हम अभी भी न्यू जर्सी में हैं, लेकिन गाने का तो फील कर सकते हैं बॉस। तो चलिए सुनते हैं हैरत फ्रॉम द एल्बम अनजाना अनजानी राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी बता सकते हो विच इज़ योर फेवरेट एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी Insta at RJ Mirchi Siddhi SIDDHI, और तब तक के लिए हैरत राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम की जिसका हर एक गाना यार हिट पे हिट था। और इस एल्बम का जो टाइटल ट्रैक था उसने यार सिर्फ मूवी में ही नहीं बल्कि पूरे जनरेशन का मूड बना दिया था। जी हाँ, बात हो रही है अनजाना अनजानी की। और अनजाना अनजानी की जो कहानी है, जो विशाल ददलानी और शिल्पा राव के डुएट में गाया गया था, जिसके लिरिक्स में ही ना वो एक वंडरलस्ट फील था कि कौन जाने कौन हूँ मैं, मतलब इंस्टेंट कनेक्ट था। और सबके लाइफ में जो ये अपनी जो भी अपनी राह ढूंढ रहे होते हैं ना, उनके लिए एकदम हिटिंग सॉन्ग था ये। वैसे गाना सुन के तो लगता था जैसे जिंदगी ना एक ट्रिप ही है, मतलब डेस्टिनेशन नहीं। तो अगर आपको भी ऐसा ही गाना जर्नी वाला पसंद है तो मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम योर फेवरेट एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिट्री सिद्धि SIDDHR। और फिलहाल बजाते हैं ये अनजान अनजानी का सुपर डुपर हिट गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, 2010 में आई थी ये एल्बम अनजाना अनजानी, कंपोज्ड बाय विशाल शेखर। और इसका एक ऐसा गाना आया था जिसमें यार मतलब दिल तोड़ दिया या फिर यादें छोड़ गई हो ना, बस वो गाना सुन लो हर फीलिंग डबल हो जाती थी। मोहित चौहान की आवाज में और शेखर रवजियानी ने भी जो इमोशन दिया था इस ट्रैक में, ओहो, किसी थेरेपी से ना कम नहीं था। क्योंकि इस गाने में सूफी टच भी था, मॉडर्न मेलेडी भी थी, जैसे कि दर्द और सुकून बिल्कुल एक साथ मिल गए हो। तो दोस्तों, इतना प्यारा गाना इस एल्बम का। वैसे तो यार इस एल्बम के हर एक गाने अमेजिंग थे, तो आपको कौन सा गाना इस एल्बम का सबसे ज्यादा पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल ये जो ब्रेकअप रिकवरी वाला गाना है ना, सुन लेते हैं यार विशाल शेखर की कंपोजिशन राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हेलो
1: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
0: हाँ जी बोलिए।
1: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
0: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ। तो हिडन चार्ज?
2: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
0: कौन बोल रही है?
1: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
0: स्कीम मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
3: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
0: हेलो कौन बोल रहा है?
1: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
0: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
2: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
0: हेलो मैडम।
1: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
0: कौन बोल रहा
1: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
0: अभी कोई और बोल रही थी?
1: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
0: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
4: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
0: कौन बोल रहा है?
1: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
0: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
5: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
0: कौन बोल रहा है भैया?
1: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
0: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
6: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
1: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
0: कोई बोल रहा
1: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल रहा हूँ, आप रमेश बोल रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
7: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
8: थैंक यू।
9: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम चांदा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज एक ऐसे एल्बम के बारे में बात हो रही है जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। जी हाँ, अनजाना अनजानी 2010 में रिलीज हुआ वो एल्बम। और आज की जो रिक्वेस्ट आई, सॉन्ग रिक्वेस्ट दैट इज फॉर द सॉन्ग तुमसे ही तुमसे। और ये जो रिक्वेस्ट आई है दैट इज फ्रॉम रिया, जो कि रहती है एडिसन में। और रिया जी कहती है कि यार ये गाना जो तुमसे ही तुमसे गाना है प्लीज सिद्धि जी बजा देना, क्योंकि ये मूड रोमांटिक है और वेदर भी रोमांटिक है, तो ऐसे माहौल में ये गाना तो बजना चाहिए। तो जी हाँ रिया जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। दोस्तों वैसे क्या आपको 2010 का वक्त याद है, जब अनजाना अनजानी एल्बम ने सबको होपलेस रोमांटिक ही बना दिया था। मतलब विशाल शेखर का मैजिक चला था और इतनी खूबसूरत सी आवाज़ है हर गाने में, विशाल की कहिए, शिल्पा राव की कहिए, रणबीर प्रियंका की केमिस्ट्री, ओ हो, मतलब तुमसे ही तुमसे एक बहुत ही सुंदर सा गाना है, जहाँ हर नोट लगता है जैसे दिल से निकला हो। जैसे लॉन्ग ड्राइव पे सनसेट के टाइम ये गाना बज जाए ना, तो बस दुनिया रुक जाए। और मुझे तो लगता है कि हर किसी के लाइफ में एक तुमसे ही तुमसे मोमेंट ज़रूर होता है, जहाँ सब कुछ एकदम ब्लर सा हो जाता है और बस वो एक इंसान दिखता है जो दिल में है। तो बताइए आपका तुमसे ही तुमसे मोमेंट कब आया था? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, या फिर इसी एल्बम का आपका फेवरेट गाना भी आप बता सकते हो। फिलहाल हम बजा रहे हैं तुमसे ही तुमसे, रिया जी के रिक्वेस्ट पर, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। चम चांदा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है 2010 के एल्बम की, अनजाना अनजानी के एल्बम की, जिसको कंपोज किया है विशाल और शेखर ने। और फिलहाल जो रिक्वेस्ट आई है दैट इज फ्रॉम राज, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे में। और यार वो कहते हैं कि यार माहौल इतना अमेजिंग सा है, मौसम खूबसूरत सा है, तो थोड़ा अपबीट गाना चाहिए। जी हाँ, तो इसी के लिए आई फील गुड जरूर बजाइए। तो बस नाम ही काफ़ी है यार, मतलब आई फील गुड एक ऐसा गाना जो बजते ही लगता है कि दुनिया में ना स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और रणबीर और प्रियंका की केयर फ्री केमिस्ट्री इन दिस मूवी अनजाना अनजानी, न्यूयॉर्क की नियॉन लाइट और विशाल ददलानी की वो रॉक स्टार एनर्जी, इस सॉन्ग को हर बीट में ऐसा लगता है कि बस लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को भूल जाओ और चिल कर लो यार। तो चलिए आज बजाते हैं आई फील गुड फ्रॉम द वंडरफुल एल्बम ऑफ अनजाना अनजानी, जिसका हर एक गाना ज़बरदस्त है। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो वो ऐसा कौन सा एल्बम है जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी ऑन इंस्टा एट आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए राज की रिक्वेस्ट पर बजाते हैं आई फील गुड राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची फ्रेश माल,
2: ड्रीमी वाइब और रोमांटिक फील के साथ सुनो शांत मेरा दिल।

इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों. चलिए 8 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरा वीकेंड शुरू होने वाला है और इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, टाटा, सायोनारा टू यू गाइस. लेकिन आप कहीं ना जाइए क्योंकि आपकी पार्टी यहीं पर शुरू हो सकती है. जी हाँ, क्लब मिर्ची शो आ रहा है, तो बस डीजे की जरूरत ही नहीं है, गाने यहीं पर बजाइए और अपनी पार्टी शुरू कीजिए राइट हियर ऑन मिर्ची. शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, दिस इज मिर्ची सिद्धि साइनिंग ऑफ.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन फैस्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन वी आर गोना गो वी आर गोना गो वी आर गोना गो ऑन अ राइड
2: क्लब मिर्ची

Party people, volume full, mood on turbo. आज का सीन सिंपल है, no overthinking, only over dancing. और नाचने के बहुत सारे reasons भी है. पहला वाला reason है हमारे DJ Richard का जन्मदिन, जो कि 1 मई को आता है, मतलब लेबर उनका और happiness हमारा, जो कि हमें मिलता है क्लब मिर्ची से. Thank you so much Richard for making our weekends fantabulous. And here's your listeners, Dree, Ride Music, Shrijoy Bhattacharya, Shudipto Roy, DVJ Arv, AKD, Mahesh Chogle and Shahib Ghosh, wishing you a happy belated birthday. And may I add my name too? Mirti Oyontika, giving you loads of love and a warm hug. Ishq bhi chal raha hai aur dance floor bhi chalega. So let's light it up. DJ Richard.